ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर

0: में GNKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और CR पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति साधना सरगम की आवाज में।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हेमंती शुक्ला की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेमंती शुक्ला, चंद्रुआत्मा, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में कुछ भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सुबह के 6:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हितकारी और प्रिय सत्य पर विचार।
1: सत्य ही ईश्वर है और सत्य का पालन करना सबसे पुनीत कार्य। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। राजा हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर की कीर्ति का आधार उनकी सत्यनिष्ठा ही थी। राजपाट, धन वैभव, पत्नी पुत्र इस सत्यनिष्ठा के आदर्श के सामने तुच्छ माने गए। भीषण से भीषण कष्ट सहकर भी सत्य की रक्षा करना नैतिक दृष्टि से मानव का कर्तव्य है। साहित्य, विज्ञान, दर्शन और धर्म सभी अपने अपने ढंग से सत्य के उद्घाटन के प्रयास ही तो हैं। सत्य को जीवन में उतार कर एकाकार कर देने के लिए इन सोपानों को लक्ष्य किया जा सकता है। सत्य संकल्प, सत्य वचन, सत्य पथ और सत्कर्म। जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए उसका निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार निश्चित लक्ष्य चुन लेने पर दृढ़ निश्चय करके किए गए प्रयास असफल नहीं हो सकते, चाहे पथ में बाधाएं भले ही थोड़ी या अधिक आ जाएं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जाके यही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले हैं न कछ संदेहु। सागर की ओर दौड़ती हुई नदियों को सदा के लिए कौन रोक सका है? निर्झरों ने पत्थर कंकड़ों की तो क्या, बड़ी बड़ी चट्टानों की बाधा भी स्वीकार नहीं की। फिर मनुष्य का सत्य संकल्पित मन बाधाओं से हार क्यों माने? वचन की सच्चाई सामाजिक जीवन का आधार है। एक दूसरे की बात को सत्य मानने के विश्वास पर समाज का सब कार्य व्यवहार चलता है। सत्य के पालन में शब्दों से अधिक उसमें निहित अर्थ का, आत्मा का सत्य मूल्यवान है। जैसा घटित हुआ उसे वैसा ही विवेक शून्य शाब्दिक रूप दे देना ही सत्य कहा जा सकता है, पर वह सत्य का आदर्श रूप नहीं है। सत्य हित और प्रिय के समन्वित रूप

को ही आदर्श सत्य बताया गया है। निर्लोभ और निर्भीकता सत्य पथ के पाथेय हैं। सत्य के बल पर टिकी निर्भीकता मानव जाति का गौरव बन जाती है। सत्य संकल्पों से युक्त सत्य पथ पर अग्रसर मानवीय भावनाएं सत्कर्मों की जननी हैं। मैत्री, करुणा और शांति आदि के सभी कार्य सत्कर्म की कोटि में आते हैं, जो संकुचित स्वार्थों से हटकर मानवता के कल्याण के लिए किए जाते हैं। वचन भंग, विश्वासघात और हिंसा के आघातों से पीड़ित विश्व मानवता आज सत्य और अहिंसा की नीति की ओर आशा भरी दृष्टि लगाए हुए है। सत्य की असत्य पर विजय निश्चित है। सत्य में विजयते।

अभी आप सुन रहे थे हितकारी और प्रिय सत्य पर विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आज की विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओ अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे अनुराधा पोंडवाल और संगीतकार होंगे सतीश भाटिया। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर सुनेगा डॉक्टर आर के कौशिक की वार्ता। विषय होगा पशुपालन में ध्यान देने योग्य बातें।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर सुनेगा। बरसाती बुखार एवं फोड़े फुंसी के से बचाव के तरीके विषय पर डॉक्टर ओपी वर्मा की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास आप सुन सकेंगे 7:31 पर। सुबह 9:25 पर सुनिएगा पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर सुनेगा सरला शर्मा के गाए कुछ ब्रज लोक गीत। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता सुना जा सकेगा सुबह 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुखदेव पवार और कैलाश पवार का राग जौनपुरी में ध्रुपद गायन। सुबह 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम आज के कलाकार में पार्श्व गायक मुकेश के बारे में। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुना जा सकेगा 11:30 पर। कार्यक्रम में आज का विषय होगा वृक्ष नहीं तो जल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। दोपहर 12:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCRT। नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने सुनिएगा 12:30 पर। 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी होम स्कूलिंग पर चर्चा मेरी माटी मेरा देश बात पते की मुझे कुछ कहना है। साथ ही सुनवाई जाएगी पूजा कालरा की कहानी शीर्षक होगा एक बार कह देता। 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गई चंद गजलें।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे पंडित सीआर व्यास का राग मिश्र कौशिया में गायन और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का राग मिश्र तिलक कामोद में गायन। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे दिन में 2:45 पर। 3 बजे सुनेगा लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:10 पर आप सुन सकेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे डीजी दुकान पर चर्चा, आज का सवाल, आइए जाने जीने की कला और चलते चलते। साथ ही गीत संगीत के अलावा सुनेगा शिवम यादव की वार्ता, विषय होगा एआई वॉइस और डिजिटल नस्लवाद। शाम 6 बजे ग्राम्य लोक कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे बूंद बूंद का मूल है बड़ा अनमोल पर चर्चा। साथ ही सुनवाई जाएगी बरसात में पशु का आहार एवं दुग्ध उत्पादन विषय पर लक्ष्मण सिंह से श्री कृष्ण की बातचीत। लोकगीतों के अलावा बताया जाएगा मंडी भाव और दी जाएगी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:35 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौंडवाल।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई, गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरित मानस गान। गायक कलाकार थे अनुराधा पोनवाल, संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पशुपालन में ध्यान देने योग्य बातें विषय पर डॉक्टर आर के कौशिक की वार्ता।
1: किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के साथ किया जाने वाला पशुपालन का कार्य गांवों में व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज गांवों में ग्रामीणों की अतिरिक्त आय के रूप में डेयरी व्यवसाय अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके चलते ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति ही सुदृढ़ नहीं हो रही है, वरन प्रदेश बदेश की आर्थिक संपदा के साथ भारत की श्वेत क्रांति का सपना साकार हो चला है। परंतु आज भी गाँव में पशुपालक उचित ढंग से पशुओं के स्वास्थ्य, खिलाई पिलाई व प्रबंध न होने के कारण इससे भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः पशुपालकों को आर्थिक सामाजिक उत्थान एवं अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे गाय व भैंस को गर्भावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार अवश्य देना चाहिए। गाय व भैंस को जीवन निर्वाह आहार के अलावा गर्भित अवस्था में 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त संतुलित आहार देना आवश्यक है। दूध देने की अवस्था में गाय को 3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम व भैंस को 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ है कि ऐसा आहार जिसमें दलहनी व गैर दलहनी रातव के उचित समावेश के अलावा हरा चारा, खनिज लवण, नमक व खल आदि का सही अनुपात में तालमेल होना चाहिए। 100 किलोग्राम संतुलित रातव बनाने के लिए 31 किलोग्राम अनाज गेहूं, जौ, मक्का, जई, ज्वार, बाजरा आदि कोई भी हो सकता है। 32 किलोग्राम खल सरसों, मूंगफली, कपास, तिल आदि कोई भी जो सस्ती हो। 33 किलोग्राम भूसी गेहूं की भूसी, चने व दाल का छिलका, धान की भूसी जो सस्ती हो। 2 किलोग्राम खनिज लवण विटामिन से युक्त हों तथा 1 किलोग्राम नमक को मिलाकर बना सकते हैं। पशु को बयाते समय स्वच्छ व सूखी जगह पर ही रखें। लवारों को पैदा होते समय उनके नथनों और मुंह को

अच्छी तरह साफ करें ताकि उन्हें सांस लेने में आसानी हो। अगर किसी कारणवश वह सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी छाती को दोनों तरफ से बार बार दबाएं। इस प्रकार से उनकी श्वास क्रिया शुरू हो जाएगी। गाय व भैंस के बयाने के बाद लवारे को उसकी माँ का दूध खीस लवारे की इच्छा अनुसार पेट भर पीने को दें। बच्चे के लिए यह अमृत के समान है। यह लवारे के पेट की सफाई के साथ ही साथ उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। लवारों के पैदा होने के बाद उनकी नाभि एक स्वच्छ धागे से ऊपर से 2 इंच नीचे बांधकर 1 इंच छोड़ते हुए नए जीवाणु रहित कैंची या ब्लेड से काट दें तथा उस पर टिंचर आयोडीन या सेवलॉन या डिटॉल नियमित रूप से 3-4 दिन तक लगाते रहें। इससे नाभि पकने का डर नहीं रहता है। बयाने के बाद लवारे को नाल से तेल न पिलाएं और ना ही अन्य पशु का दूध या तरल पदार्थ पिलाएं। यह हानिकारक रहता है। नाल द्वारा पिलाने पर तेल या दूध उसके फेफड़ों में जाने का खतरा रहता है, जिससे प्राय बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दुधारू पशु का बच्चा मर जाने या अन्य कारणवश दूध न देने की अवस्था में पशुपालक प्राय इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है। जैसे जब इंजेक्शन का प्रयोग होता है तो गाय भैंस गर्भित नहीं होती है। यदि गर्भित हो भी जाए तो पलटने अर्थात गर्भ न ठहरने का भय बना रहता है। इससे मादा बांझ भी हो सकती है। इंजेक्शन बंद होने के बाद पशु यदि गर्भित हो भी जाए तो उसके फूल योनि से कुछ हिस्सा बाहर निकलने की शिकायत हो जाती है। यह खतरा भैंस को बयाते समय तक बना रहता है। बयाने के बाद बेली निकलने की संभावना अधिक हो जाती है। यदि पशु का समय से उपचार नहीं किया तो बांझपन की समस्या आ सकती है। यह भी देखने में आया है कि इंजेक्शन लगने के बाद दूध में ट्यूब आता है, जिससे दूध का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है या उसमें ट्यूब की फुदकियाँ टुकड़े भी देखने को मिलती हैं। यही प्रक्रिया योनि में भी होती है। कभी कभी पशु के गर्म होने के समय शराब में खून की फुदकियाँ टुकड़े देखी जा सकती हैं, जो गर्भ ठहरने में बाधक होती हैं। इंजेक्शन द्वारा निकाला हुआ दूध यदि गर्भित महिलाएं या बच्चे पीते हैं तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लड़कियां कम उम्र में वयस्क हो जाती हैं और लड़कों पर उल्टा प्रभाव देखने में आया है, जिससे सामाजिक बुराइयां अधिक पैदा हो सकती हैं। इसका प्रभाव समाज में देखने को मिल रहा है। अतः इंजेक्शन का प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। प्राय गलत धारणा है कि खीस पिलाने से लवारों के पेट में पटेरे हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पटेरे तो हर पशु व लवारे के पेट में हो सकते हैं, चाहे वह किसी भी आय लिंग या नस्ल का हो। पटेरों की कम संख्या भी प्रतिकूल असर डालती है। यह स्वास्थ्य खराब करने अनेक बीमारियों को जन्म देने के अलावा दुग्ध उत्पादन पर भी बुरा असर डालते हैं। यह पशुओं के सबसे बड़े शत्रु हैं। पशु जो कुछ भी पौष्टिक आहार खाता है उसे चट कर जाते हैं। इनसे प्रजनन शक्ति भी छीण होती है। क्रम से पीड़ित पशु के मुख्य लक्षण पशु में मूत्र की कमी, शरीर की चमड़ी में खुरदरापन, चमक की कमी, प्रजनन शक्ति का ह्रास, पेट को पीटने पर थप थप की आवाज़ करना, पहले बदबूदार दस्त होना तथा आँखों से कीचड़ आना आदि प्रमुख हैं। पटेरों के बचाव हित लवारों व बड़े पशुओं को समय समय पर शरीर भार के अनुसार क्रमनाशी दवाओं को देते रहना चाहिए, जो बाजारों में विभिन्न नामों से मिलती हैं। असंतुलित आहार के कारण शरीर में खनिज तत्वों की कमी के कारण गाय भैंस समय पर रितमयी नहीं होती। कैल्शियम की कमी से दूध में गिरावट, कमजोरी व अनेकों बीमारियों जैसे दुग्ध ज्वर भी आ जाती है। इस कारण पशु दीवाल व मिट्टी चाटने लगते हैं तथा कभी कभी मूत्र भी पीने लगते हैं। अतः खनिज तत्वों की पूर्ति हेतु बाजार में उपलब्ध खनिज लवण मिश्रण को 20-60 ग्राम तक मात्रा प्रतिदिन पशु के आकार के हिसाब से देनी चाहिए। यह बाजार में 25 से लेकर 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विभिन्न नामों से उपलब्ध हैं। खनिज लवण मिश्रण के प्रतिदिन सेवन से खनिज तत्वों की पूर्ति के साथ पशु चारा अच्छी तरह खाता है, शरीर पर चमक आती है, पशु समय से रितमयी होता है तथा दूध की वृद्धि होती है। प्रतिदिन 3 बार दिन में स्वच्छ व ताजा पानी पशुओं को पिलाना चाहिए। गड्ढे या तालाब का पानी कभी न पिलाएं। संक्रामक

0: रोगों से बचाव के टीके समय पर अवश्य लगवाएं। खुरपका, मुंहपका, लंगड़िया, घुर्रका, जहरवाद आदि के टीके फरवरी से जून तक अवश्य लगवाएं। एक टीका पशु को 6 माह तक लगवाने से बीमारी से सुरक्षा होती है।
1: अभी

अभी आप सुन रहे थे पशुपालन में ध्यान देने योग्य बातें विषय पर डॉक्टर आर के कौशिक की वार्ता। इसी के साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति. ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः.
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्य दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन. केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनम कृतवन्तौ. तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ़ निग्रहं कर्तुं अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्. असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति. प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुते मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्. वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू इत्येषा भारत उत्तर मेसिडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती. उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्. स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अवदत् यत् भारतीय राष्ट्र

0: राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभयदेशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढप्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः सम्भावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिकव्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याणमार्गे विरोधप्रदर्शनस्य निन्दामकरोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलिपीन्स देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेशमन्त्री स्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: श्रोताओं का एक बार फिर से हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में। सुबह का समय हुआ है 7 बजे का और ये समय
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेब

0: अमेरिकन के राष्ट्रपति जोसेफ हाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: रचनात्मक और संतुलित निर्णय ले सकता है। श्रोताओं, विश्व मस्तिष्क दिवस।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav told the media persons that the meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Meanwhile, the government has said it is ready to hold discussions in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi last evening, Union Minister Jitendra Singh accused the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
4: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress

0: leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has accused the Congress and the leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of using students as political tools to create disruption during the monsoon session of Parliament. In a social media post, Mr. Pradhan stated that Mr. Gandhi and other Congress leaders staged a protest outside the Prime Minister's residence, causing inconvenience to the public and disregarding established security protocols. Mr. Pradhan added that even after the government conveyed its readiness for a comprehensive discussion on the NEET issue, the Congress chose political spectacle over democratic debate. France's Parliament has passed a landmark bill barring children under the age of 15 from using social media platforms. Lawmakers in both chambers of France's Parliament voted yesterday in support of the legislation, which also bans students from using mobile phones in schools. In China Open Badminton, PV Sindhu will take on compatriot Unnati Huda and Lakshya Sen will get their singles campaign underway today. Ayush Shetty will take on Alvi Farhan in the singles opening round today. Men's doubles pair MR Arjun and Hariharan Amasakarunan. Mixed doubles pairs Rohan Kapura, Ruturaj Shivani Gadde will also be in action today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है. मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर. श्रोताओ, सुबह के 7:10 हो रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा. कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर ओपी वर्मा की वार्ता. विषय है बरसाती बुखार एवं फोड़े फुंसी से बचाव के तरीके.
2: बरसाती बुखार उस बुखार को कहते हैं जो बरसात के समय बरसात के कारण होने वाली कुछ बीमारियों में उत्पन्न होता है. बरसात में चूंकि जगह जगह पानी का भराव होता है तो उस पानी के भराव की वजह से वहाँ मच्छर पैदा होते हैं और इन मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू आदि बुखार उत्पन्न होते हैं. इसके अलावा बरसात के समय में हवा में पानी की नमी बढ़ती है. यह नमी वायरस के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है, सहायक होती है. तो इस कारण बरसात के समय में वायरल फीवर भी अधिक होता है. इसके अतिरिक्त बरसात की वजह से गंदगी के कारण टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड या पीलिया की बीमारी की होने की भी संभावना बनी रहती है. अतः ऐसी स्थिति में हमें इन सब चीज़ों से बचाव करने के लिए पानी का इकट्ठा होना या अन्य ऐसी गंदगियां जो बरसात की वजह से हो रही हैं उनसे बचाव करना होता है. इसके अलावा बरसात में हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से हमारा पसीना नहीं सूख पाता है. तो पसीना ना सूखने की वजह से शरीर के अंदर इधर तो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और दूसरा पसीना न सूखने की वजह से फोड़े फुंसी भी ज़्यादा होते हैं. अतः बरसात के समय में फोड़े फुंसी और इन बुखार की बीमारियों से बचाव करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम घर के आसपास बरसाती पानी इकट्ठा न होने दें. अपने कूलर्स जो कि पानी का सबसे बड़ा स्टैगनेंट वाटर का सबसे बड़ा सोर्स होता है उसमें बार बार पानी की सफाई करते रहें, बदलते रहें. इसके अलावा पहनने के लिए सूती और पतले कपड़े का उपयोग करें ताकि पसीना इकट्ठा ना हो और सूखता रहे. इसके अतिरिक्त हम बरसात के समय में गंदी और खुली हुई चीज़ या कटे हुए फलों का सेवन न करें और जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए चलें. फिर मच्छरों से बचाव करने के लिए मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते रहना चाहिए. घर के कूलर में सबसे बड़े एक सोर्स होता है जहाँ मच्छर इकट्ठे होते हैं, इसलिए घर के कूलर की सफाई समय समय पर करते रहें, उसमें पानी बदलते रहें. अगर बरसात का पानी आसपास कहीं गड्ढों में इकट्ठा होता भी है जो हमारे लिए मजबूरी है तो उस पर हम थोड़ा मिट्टी के तेल का छिड़काव करें. इस छिड़काव की वजह से

0: वहाँ एक एक पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। यह लेयर फिर मच्छरों को पैदा नहीं होने देती है और इसकी वजह से हमें उसका बचा फीवर फीवर का बचाव होता है। मलेरिया या डेंगू या मच्छर से होने वाली अन्य बीमारियों की तरफ से हम बचते हैं। लेकिन इसके अलावा मुख्य रूप से हमें जो ख्याल रखना है बरसात के समय में, वो है गंदगी का। बरसात के समय में हमारे जूते आदि के साथ गंदगी घर के अंदर पहुंचती है, तो घर के अंदर जाने से पहले अपने बाहर एक पायदान पर अपनी गंदगी जूतों की साफ करनी चाहिए। इसके अलावा घर के अंदर भी गंदगी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदी चीज खाने से बचना चाहिए। कटे हुए ये फलों को बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से ही बार बार हमें कुछ ना कुछ बीमारी या इन्फेक्शन लगते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त समय पर हमें जिन जिन बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं वो टीके लगवाने चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बरसाती बुखार एवं फोड़े फुंसी से बचाव के तरीके विषय पर डॉक्टर ओपी वर्मा की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में ये देश गान।
1: केवल भगवान से डरो, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता।

0: सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। और शिलान्यास, बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जल स्तर बढ़ा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक रिपोर्ट।
1: कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य, निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेस वे को लेकर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी।
2: इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि योजना की लाभार्थी छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, अग्निशमन और आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25 करोड़ 78 लाख रुपए के प्रस्ताव और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए

0: के ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के आने से विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश को नई पहचान मिली है।
2: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। कल संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
5: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले CEO के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बैठक के मद्देनजर SPCT चक्रपाणी त्रिपाठी और ADM City योगानंद पांडे ने बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी।
6: डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी देने का उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। समाचार कक्ष

0: से वेद प्रकाश पाठ।
1: राजधानी लखनऊ सहित कई प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण पीलीभीत में भी शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। और शिलान्यास, बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खोए हुए व्यक्तियों की सूचना सुन लीजिए। थाना कोतवाली नगर एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार चांदनी पत्नी दीपक विगत 11 जून 2026 से लापता हैं। ये जगन्नाथपुरी कोतवाली नगर एटा की रहने वाली हैं। चांदनी की आयु 19 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, रंग सांवला और चेहरा पतला है। ये लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। चांदनी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना कोतवाली नगर जनपद एटा के पते पर सूचित करें। थाना सकीट एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार किरण पुत्री हरीशचंद्र पत्नी विपिन कुमार विगत 21 जून 2026 से लापता हैं। ये मुबारकपुर सराय एटा की रहने वाली हैं। किरण की आयु 30 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, रंग गोरा और चेहरा गोल है। ये लाल रंग की साड़ी और पैरों में जूती पहने हुए हैं। किरण के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना सकीट जनपद एटा के पते पर सूचित करें। थाना जैथरा एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती मधु पत्नी राजीव कुमार विगत 8 मई 2026 से लापता हैं। ये रजबपुर जैथरा एटा की रहने वाली हैं। श्रीमती मधु की आयु 35 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। ये आसमानी रंग की साड़ी और पैरों में सफ़ेद चप्पल पहने हुए हैं। श्रीमती मधु के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना जैथरा जनपद एटा के पते पर सूचित करें। थाना निधौली कला एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति

टीका नाम मुकेंद्र कुमार, पुत्र स्वर्गीय प्रेमपाल सिंह है। ये विगत 26 मई 2026 से लापता हैं। ये ग्राम जमालपुर एटा के रहने वाले हैं। मुकेंद्र कुमार की आयु 27 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 4 इंच, रंगे हुआ और चेहरा गोल है। ये पैंट शर्ट पहने हुए हैं। मुकेंद्र कुमार के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना निधौली कला जनपद एटा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सूचनाओं पर। 390 करोड़ से बनेगी आगरा जलेसर रोड, सफर होगा आसान। जलेसर रोड पर लोगों का आवागमन जल्द ही सुलभ होगा। एक दशक से आगरा जलेसर रोड के निर्माण और चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटने और उन्हें ट्रांसलोकेट करने की अनुमति प्रदान कर दी है। 51 किलोमीटर लंबे आगरा जलेसर रोड का निर्माण 390 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसके लिए 31 जुलाई को निविदा आमंत्रित की जाएगी। टेढ़ी बगिया से शुरू होने वाली आगरा जलेसर रोड कुल 51 किलोमीटर लंबी है। इसका 36 किलोमीटर का हिस्सा आगरा में आता है, जबकि 15 किलोमीटर का हिस्सा एटा में है। उक्त मार्ग को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला था। मुख्य मार्ग पर जगह जगह गड्ढों के चलते वाहन चालकों का निकलना मुश्किल है। गड्ढों के चलते यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। मुख्य मार्ग होने के चलते ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही थी। सड़क के निर्माण में करीब 3000 पेड़ आ रहे थे। इन्हें काटने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट दे दी थी। इसके लिए 31 जुलाई को निविदा आमंत्रित की गई है। सड़क को 2 वर्ष में बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आज और कल एक चौथाई शहर को नहीं मिलेगा गंगा जल। शहर के एक चौथाई क्षेत्रों को बुधवार और गुरुवार को पानी नहीं मिलेगा। जल निगम नगरीय शाखा की टीम नमामि गंगे योजना के में शाहजहां गार्डन गेट के पास पाइपलाइन बिछाएगी। यह कार्य एक माह से अटका हुआ है। जलकल विभाग की टीम लोगों की परेशानी को देखते हुए टैंकरों से पानी की आपूर्ति करेगी। शुक्रवार सुबह जलापूर्ति शुरू हो जाएगी। नमामि गंगे योजना में फतेहाबाद रोड और शाहजहां गार्डन के गेट के पास कार्य चल रहा है। फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज व्यू के सामने कार्य पूरा हो गया है। शाहजहां गार्डन के गेट के पास अभी कार्य बाकी है। यह कार्य बुधवार सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसके चलते ताजगंज छिपी टोला सहित शहर के एक चौथाई क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होगी। डीएम नमामि गंगे जुबेर ने बताया कि गुरुवार को रात तक कार्य चलेगा, फिर पंपों को शुरू किया जाएगा, जलाशय और पानी की टंकियों को भरा जाएगा। ऐसे में शुक्रवार सुबह संबंधित क्षेत्रों में

पानी मिलेगा। इन क्षेत्रों में नहीं होगी जलापूर्ति। ये क्षेत्र हैं बालूगंज, रकाबगंज, छिपीटोला, ताजगंज, इंदिरा कुंज, हन्ना गली, विभव नगर, नौलखा, सदर बाजार, बुंदू कटरा, मधुनगर क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं।

संप्रेक्षण गृह के किशोरों के व्यक्तित्व विकास में मदद करेगा विश्वविद्यालय। राजकीय संप्रेक्षण गृह में रहने वाले किशोरों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनके व्यक्तित्व के विकास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी मदद करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने मंगलवार को विश्वविद्यालय कुलपति से मुलाकात की। बैठक में किशोरों के शैक्षिक, नैतिक, मानसिक एवं सामाजिक और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। सचिव ने कहा कि किशोरों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, विधिक जागरूकता, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा समय समय पर प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना आवश्यक है। कुलपति ने विश्वविद्यालय स्तर से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए किशोरों के शैक्षिक उन्नयन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मेरा भारत पोर्टल पर पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश। खेल मंत्रालय की ओर से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें डीएम सिटी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरा भारत पोर्टल पर युवाओं के पंजीकरण अभियान की प्रगति, विभिन्न विभागों, विद्यालयों, महाविद्यालयों व संस्थानों के माध्यम से अधिक युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए। डीएम सिटी ने अधिकारियों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों को पोर्टल पर पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया विस्तार पूर्वक समझाई। कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को मेरा भारत पोर्टल से जोड़कर संचालित विभिन्न युवा कार्यक्रमों, स्वयंसेवी गतिविधियों, कौशल विकास, नेतृत्व विकास एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े अवसरों का लाभ दिलाया जाए। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों व सदस्यों को पोर्टल की उपयोगिता, उद्देश्य और विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, आइए एक बार फिर चलते हैं आज की मुख्य सूचनाओं की ओर। 25 मिनट के औसत समय में वादों का निस्तारण। आगरा रेल मंडल में जून माह के दौरान रेल मदद ऐप पर प्राप्त शिकायतों का औसतन 25 मिनट में निस्तारण किया गया। पीआरओ ने बताया कि आगरा रेल मंडल यात्रियों की सुविधा और सहायता के लिए लगातार तत्पर है। जून माह में रेल मदद ऐप पर प्राप्त 2,566 शिकायतों का औसतन 25 मिनट में निस्तारण कर मंडल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि यात्री रेल मदद ऐप के माध्यम से ट्रेन से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ऐप के जरिए ट्रेन की साफ सफाई, पेयजल उपलब्धता, बुजुर्ग यात्रियों को ऊपरी बर्थ के स्थान पर निचली बर्थ उपलब्ध कराने, दवा, बच्चों के लिए दूध तथा अन्य चिकित्सकीय सहायता जैसी सुविधाओं के लिए भी अनुरोध किया जा सकता है।

आगरा से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ जाएगा। सभी एक्सप्रेस वे व लिंक एक्सप्रेस वे 6 लेन के होंगे। आगे चलकर इन्हें 8 लेन का बनाया जा सकेगा। इन पर औसत स्पीड 120 किलोमीटर होगी। ये आगरा एक्सप्रेस के किलोमीटर 294 से शुरू होगा तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किलोमीटर 6 पर समाप्त होगा। यह लखनऊ कानपुर तथा रायबरेली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद के रास्ते गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा। विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक विकल्प 1 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

विश्वविद्यालय ने बढ़ाई परीक्षा आवेदन की तिथि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि बढ़ा दी है। इनमें एमएड और एलएलएम पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। इसके तहत एमएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर और एलएलएम प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के छात्र अब 25 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि एमएड सत्र 2025-27 के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को अपनी समर्थ आईडी के जरिए समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना होगा और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। वहीं पुनः एवं भूतपूर्व परीक्षा और सत्र 2024-26 के चतुर्थ सेमेस्टर मुख्य पुनः एवं भूतपूर्व परीक्षा के आवेदन पत्र संबंधित महा

विद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एजेंसी द्वारा भरवाए जाएंगे। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा जनपदों के एमएड सत्र 2023-25 और सत्र 2024-26 चतुर्थ सेमेस्टर के योग्य छात्रों के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय से भरे जाएंगे।

नई दिल्ली आगरा इंटरसिटी आज रहेगी रद्द। रेलवे ने मंगलवार दोपहर 3 बजे अचानक नई दिल्ली आगरा इंटरसिटी को रद्द कर दिया। बुधवार सुबह

दिल्ली आगरा इंटरसिटी को रद्द कर दिया। बुधवार सुबह भी आगरा नई दिल्ली इंटरसिटी का संचालन नहीं होगा। आगरा नई दिल्ली इंटरसिटी से बड़ी संख्या में यात्री नई दिल्ली पहुंचते हैं।

सावन में शिव भक्तों को नहीं होगी परेशानी, निगम अलर्ट। सावन में शिवालयों पर लगने वाले मेलों और भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था के लिए नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है। नगर आयुक्त ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ राजेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और बल्केश्वर मंदिर जाने वाले प्रमुख मार्गों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। नगर आयुक्त ने सबसे पहले राजेश्वर मंदिर प्रबंधन से बात की, वहां की समस्याएं और जरूरतें सुनी। इसके बाद उन्होंने परिक्रमा मार्ग और मंदिरों तक जाने वाले रास्तों पर साफ सफाई, पानी की निकासी, सड़कों की हालत, स्ट्रीट लाइट, पीने का पानी, सार्वजनिक शौचालय और कूड़ा उठाने जैसी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सावन शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विशेष सफाई अभियान चलाने, नियमित कूड़ा उठान, पर्याप्त रोशनी, निर्बाध पानी की आपूर्ति और जलभराव रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्रोताओं, ये थी आज की मुख्य सूचनाएं और आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

इसी के साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
4: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
6: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य

0: और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
2: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में

0: आधारित पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी

0: मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्स फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ मैसिडोनिया। अर्जेस बिजनेसेस फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू मूव बियॉन्ड ट्रेड एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Hooda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: Our correspondent covering the President's visit to North Macedonia has filed this report.
3: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security, and startup ecosystems. The President invited North Macedonia to join initiatives such as International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the Global Biofuels Alliance. She also extended an invitation to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit WAVES to be held in India next year. This is Subhasri Mahapatra from Skopje, North Macedonia.
1: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. A report.
4: The 16th BRICS Health Ministers meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Addressing a press conference, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava said that discussions during the ministerial meeting

0: businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी राब्तों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आपदोस शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तहत अपने अहद का इयादा किया है और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी टेक्नोलॉजी नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोबजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकतदारी कायम करने के लिए मदऊ किया जिससे माली शमूलियत को फरोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाजा होता है।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नमानिगार की एक रिपोर्ट।
3: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। यह सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निजाम के शोबों में शराकत दारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैन अल-अक़वामी समशी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे मुश्तरका इकदामात में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियो विजुअल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निपटने की तैयारी और मयारी हिफ्जान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स वज़राए सेहत

0: की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तरा, बाहमी तावुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम को आगे बढ़ाने के तई भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तराज, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बे निजाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। आज आला ओहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कल सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वुजराए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनाकिद होगी। इस मीटिंग में वुजरा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: भारतीय बहरिया INS मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनाकिद होगी। INS मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाजों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनकदा करने के वाकयात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस सरकारी स्कीम के तहत तालिबात को न सिर्फ स्कूटी फराहम की जाएगी बल्कि उन्हें बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, लाजमी मुतल्लिका सामान और 4 लीटर पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। माजूर तालिबात शहीद फौजियों और बेघर अफराद की बेटियों के लिए आमदनी की हद की शराइत में रियायत दी जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारत ने उसूलों पर मबनी, शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निजाम के तई अपने अज़्म को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाजा होता है। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तजारती निजाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वजी तर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नर्म रवि पर मबनी गैर मुल्की रास सरमायाकारी के निजाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबैन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इन्हिसार शराकतदार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

0: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहां दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तिजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद अहम बैन अलावामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी राब्तों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वरों में फिल्म प्यासा सावन का ये गीत। गीत को लिखा था संतोष आनंद ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मनपसंद का ये गीत।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोता मुकेश की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म सफ़र का ये गीत। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और येसुदास की आवाज़ों में माया गोविंद की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है खयाम ने। फिल्म का नाम है बावरी।

श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
1: वाराणसी में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लेकर ग्रामीण विकास सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गांवों तक विकास की हर योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से जन भागीदारी बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकासोन्मुखी बनाना है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 350, बिहार के 75, झारखंड के 50 तथा उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विकसित ग्राम पंचायतों की अवधारणा, ग्राम स्वराज, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता आधारित विकास मॉडल की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण सड़क, स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने गाँव के विकास को नई दिशा और गति दी है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा करते हुए इन्हें गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्राम प्रधान प्रियंका सिंह ने कहा, सभी ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास को जन भागीदारी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीचौरा अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल के व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल को 9 मंजिला अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वांचल के लाखों मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। नए अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कैंसर उपचार, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 50 से अधिक आईसीयू बेड, 100 से अधिक एचडीयू बेड, अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सा सहित कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने वार्डों का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात कर उपचार की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा चिकित्सकों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर हाल में सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कबीचौरा अस्पताल का यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा
2: मंडली चिकित्सालय की जो सुविधाएं हैं वो भी रहेंगी और अतिरिक्त भी सुविधाएं, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाएंगे और बेहतर उच्चीकृत सेवाएं करेंगे, एमआरआई, सीटी, डायलिसिस, अन्य सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर कराएंगे। जो भी आवश्यकताएं हैं वाराणसी की मरीजों के हित में सब कुछ पूरे करेंगे।
1: प्रदेश में 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में वाराणसी मंडल ने अग्रणी उपलब्धि हासिल करते हुए विभिन्न प्रमुख सूचकांकों पर 100% प्रदर्शन दर्ज किया है। अभियान के अंतर्गत गांव-गांव एवं शहर-शहर व्यापक स्तर पर टीबी की स्क्रीनिंग, जांच

0: एवं उपचार की सेवाएं प्रदान की गई। अभियान के दौरान हाई रिस्क गांवों का 100% आच्छादन सुनिश्चित किया गया। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर एनडी शर्मा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की गई तथा चिन्हित मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया गया। अभियान में वाराणसी मंडल के चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
1: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
2: मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी पहल है, जो शिक्षकों तथा उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। शिक्षक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि
3: मऊ जिले के लगभग 9,000 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है और शिक्षक को ही नहीं बल्कि उसके परिवार जनों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और माध्यमिक शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को भी इसका लाभ मिलने वाला है।
2: मऊ जिले में बाढ़ एवं तटकटान से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी आनंद वर्धन ने सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम परसिया देवार एवं धर्मपुर विशुनपुर के मध्य प्रस्तावित तटकटान निरोधक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 566.16 लाख रुपए है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि परियोजना के प्रत्येक चरण का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी की धारा को सुचारू रूप से प्रवाहित करते हुए तट को सुरक्षित बनाना, नदी के दाएं तट को अस्थायित्व प्रदान करना तथा आसपास के गांवों, कृषि भूमि एवं पक्के मकानों को कटान से बचाना है। मऊ के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद में संचालित पोषण संबंधी कार्यक्रमों, संभव अभियान 6.0 तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार ने संभव अभियान 6.0 के 5 प्रमुख घटकों, सामुदायिक जन जागरूकता एवं सहभागिता, कुपोषण की शीघ्र एवं समयबद्ध पहचान, आवश्यक सेवाओं से लाभार्थियों को जोड़ना, नियमित अनुवर्ती अनुश्रवण तथा आवश्यकता अनुसार संदर्भन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभव अभियान 6.0 की थीम गर्भा अवस्था से बाल्या अवस्था तक पोषण सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गंभीर एवं मध्यम कुपोषण की रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनका ई कवच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। मऊ जिले में चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अभियान को जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाने तथा प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छता एवं रोगों से बचाव का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए साफ सफाई, जल भराव की रोकथाम, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव तथा व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। मऊ जिले में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पुलिस कार्यालय में

0: शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 9:25 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म मुझे जीने दो का ये गीत। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म मल्हार का ये गीत। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं रोशन।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शैलेंद्र की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम था दिल तेरा दीवाना। श्रोताओं, पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म बरसात की रात का ये गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म बरसात की रात के इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय सुबह के 9:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरला शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं सरला शर्मा के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे सरला शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सड़क से। गीत को गाया है अनुराधा पौंडवाल ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म साजन का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरसरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अगला गीत सुनते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म हमारा दिल आपके पास है का ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत बद्ध किया था संजीव दर्शन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरसरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अगला गीत सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म लम्हे का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है शिवहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म लम्हे का ये गीत। इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुखदेव पवार और कैलाश पवार का राग जौनपुरी में ध्रुपद गायन। आइए सुनते हैं।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुखदेव पवार और कैलाश पवार का राग जौनपुरी में ध्रुपद गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

जी साथियों, उनके गाए गीत दिल में उतर जाते हैं। उनकी आवाज जिसका अंदाज सबसे निराला था। पता है साथियों, उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सबके भीतर वो थोड़े थोड़े मौजूद हैं। जब हम उदास होते हैं तो उनके गाने हमारे होठों पर आ जाते हैं, और जब हमारे अंदर रूमानियत की खुशबू महकती है तब भी वो हमारे साथ होते हैं। जिस गायक ने भारतीयों की उदासी को सबसे ज्यादा बांटा है, उनका नाम है मुकेश। जी हां साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय पार्श्व गायन के दिग्गज मुकेश चंद माथुर की।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार और मैं आज आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीतू दुबे। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और साथियों बने रहिए हमारे साथ इस रेडियो के सफर पर और आनंद लेते रहिए अपने मनपसंद कार्यक्रमों का। तो साथियों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी आवाज से सबको अपनी ओर आकर्षित किया।

साथियों, अभी आपने मुकेश की आवाज में ये मधुर गीत सुना। उनकी आवाज सीधे दिल में उतर जाती है। साथियों, इस महान गायक का जन्म 22 जुलाई यानी कि आज ही के दिन दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जोरावर चंद माथुर एक इंजीनियर थे और उनकी मां का नाम चांदरानी था। साथियों, पता है अपने 10 बहन भाई

में ये छठवें स्थान पर थे। कहते हैं ना कि बच्चे की रुचि बचपन से ही दिखाई दे जाती है। मुकेश का मन भी पढ़ाई से ज्यादा संगीत में लगता था। उन्होंने अपनी बहन की संगीत की कक्षाओं से छुप छुप कर संगीत सीखना शुरू किया था। सतयुग बचपन में ये अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो नियति को मंजूर हो वही होता है। शुरुआत में उन्होंने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग में क्लर्क की नौकरी भी की। एक बार एक पारिवारिक शादी में गायक और अभिनेता मोतीलाल ने उनकी आवाज सुनकर उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया और इस तरह शुरू हुआ इनका अगला सफर।

0: साथियों, मुकेश ने मुंबई आकर 1941 में आई फिल्म निर्दोष में अभिनेता और गायक के रूप में काम किया। इनकी आवाज में केएल सहगल का अंदाज झलकता था। इसी अंदाज में गीत गाकर 1945 में फिल्म पहली नजर का गीत दिल जलता है तो जलने दे, और पता है ये गीत उनके कैरियर का पहला बड़ा हिट साबित हुआ। उसके बाद 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात और महबूब खान की अंदाज फिल्म के गानों ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। साथियों, मुकेश राज कपूर की आवाज बनकर उभरे। राज कपूर की बतौर हीरो पहली फिल्म थी 1947 में आई केदार शर्मा की नीलकमल, इसमें मुकेश ने उनके लिए गाना गाया था। 1948 में जब राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म आग बनाई तो मुकेश से गवाया जिंदा हूं इस तरह, बस फिर क्या, यहां से खुद राज कपूर की आवाज मुकेश ही बनते।
1: मैंने

साथियों आपको बता दें, मुकेश जी ने राज कपूर के लिए 100 से ज्यादा गाने गाए। अपने शानदार करियर में मुकेश ने 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और

है 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यूं ही देखा है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। साथियों, इन्होंने सरल त्रिवेदी से विवाह किया। उनके बेटे नितिन मुकेश और नील नितिन मुकेश भी फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। साथियों कहते हैं वे प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठते थे, चाहे भले ही वे 15 मिनट पहले ही सोने के लिए गए हों। 1-2 घंटे रियाज के बाद बगल के बगीचे में वे टहलते थे। वहां हर एक फूल को वो बड़े प्यार से देखते थे, मानो किसी अपने से बातें कर रहे हों। ऐसे थे एक सुरीली आवाज के मालिक मुकेश।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

साथियों, वैसे तो मुकेश ने हर किस्म के गाने गाए, मगर दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के बिना अधूरी है। उनकी आवाज ने दर्द भरे गीतों में जो रंग भरा, उसे दुनिया कभी भुला नहीं सकती। दर्द का बादशाह कहे जाने वाले मुकेश ने अगर जिंदा हूं मैं इस तरह, ये मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, और दोस्त दोस्त ना रहा जैसे कई गानों को अपनी आवाज के जरिए दर्द में डुबो दिया। साथियों, तो वही जाने कहां गए वो दिन, और मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे गाने गाकर प्यार के एहसास को और गहरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथियों, यही नहीं, मुकेश ने अपनी आवाज में मेरा जूता है जापानी जैसा गाना गाकर लोगों को सारा गम भूलकर मस्त हो जाने का मौका भी दिया। मुकेश ने अपने आप को दर्द का बादशाह तो साबित किया, इसके साथ साथ वैश्विक गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी आवाज संगीत प्रेमियों के दिलों को छू जाती है।

0: तारे शोर।
1: पवन तारे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस रेडियो के सफर पर और आनंद लेते रहिए अपने मनपसंद कार्यक्रमों का। तो साथियों, अब चलते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत की ओर। साथियों, आजकल मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। अरे भाई, रिमझिम फुहार जो पड़ रही है और चारों तरफ हरियाली देखकर तो मन खुशी हो जाता है। साथियों, सावन का महीना आने को है, और तो सावन का महीना और रिमझिम बारिश, यही तो इसकी खासियत है। साथियों, हरियाली की बात हो और वृक्षों की बात न हो तो ऐसा नहीं हो सकता। साथियों, वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। ये हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, औषधियाँ, लकड़ी और छाया प्रदान करते हैं। पता है, ये वातावरण को शुद्ध करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। साथियों, वृक्ष नहीं तो जल नहीं, और जल नहीं तो कल नहीं। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।

साथियों, गांव की सुंदरता ही हरियाली से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृक्ष, जल और जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि वृक्षों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो वर्षा कम होगी और भूजल का स्तर घटेगा और धीरे धीरे जल संकट बढ़ता जाएगा। जल के बिना मनुष्य क्या, पशु, पक्षी, खेती, प्रकृति सबका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। साथियों, जल सबके लिए जरूरी है, इसलिए अगर हमें संकटों से दूर रहना है तो वृक्षों और जल का संरक्षण करना होगा। जल हमारे जीवन का आधार है। सुबह से शाम तक हम जल पर ही तो निर्भर हैं। कल्पना कीजिए, सुबह उठकर यदि हमें पानी न मिले तो कैसे शुरू होगी हमारी दिनचर्या। दैनिक जीवन के लगभग हर कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन तभी संभव है जब पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल उपलब्ध हो।

0: साथियों, आपको पता है वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक वृक्ष होने पर वर्षा का जल भूमि में समा जाता है और नदियां, तालाब और कुएं लंबे समय तक भरे रहते हैं। आजकल पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और जंगलों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। साथियों, तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वृक्ष और जल पर ही संकट आएगा तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? और ये तो आप भी जानते ही हैं कि स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे से काम कर सकता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु, जो हमें पेड़ों से ही मिलती है। यदि समय रहते हमने इसे नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। और साथियों, मौसम की सुंदरता पेड़ों और वर्षा से ही तो है।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

साथियों, यदि हम स्वस्थ और सुखी रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान अपने आसपास भी रखना होगा। जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएं ही नहीं, उनकी देखभाल भी करें, क्योंकि पेड़ों के बिना धरती पर हमारा जीवन ही संभव नहीं। पेड़ों के बिना हमें खाना नहीं मिलेगा, हवा, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिलेगा। साथियों, वृक्ष सिर्फ लकड़ी ही नहीं देते, ये हमारे जीवन की तमाम बाधाओं को दूर करके जीवन को गतिशील बनाते हैं। इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वृक्ष ही जीवन है। साथियों, हमारे धर्मशास्त्रों में भी वृक्षों की महिमा को बताया गया है, उनकी पूजा करना बताया है, जिससे हम उनको सहेज कर रख सकें। प्रत्येक वृक्ष को संतति कहा गया है और उसे देवताओं से जोड़ा गया है, जिससे हम पेड़ों की पूजा और सम्मान करें, क्योंकि ये हमें जीवनदायिनी हवा और पानी देते हैं। और साथियों, फूलों को देखकर तो मन यही गाने लगता है।

साथियों, पेड़ पौधे इन सबसे ही तो खुशियां हैं। और आज वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जनजीवन संकट में होता जा रहा है। वनों के विनाश के कारण वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अलग बढ़ रहा है। पेड़ों की कटाई से वर्षा कम हो रही है और कम वर्षा से जल स्रोत भी दूषित हो रहे हैं। साथ ही अगर समय रहते हम नहीं संभले और पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया तो ये हमारी सुंदर धरती पेड़ पौधों और वनस्पतियों से विहीन हो जाएगी और धरती का तो श्रृंगार

ही हरियाली है। इसके साथ हमारे जीवन का सहारा भी तो प्रकृति ही है। पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वृक्ष और जल दोनों ही जीवन का आधार है। यदि हम आज वृक्ष और जल का संरक्षण करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य मिल सकेगा।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: जाती है, इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
0: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे, कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुलके से कामिल बुलके बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
0: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
0: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
0: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
0: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी,
0: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
0: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
0: जी,
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
0: जी,
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
0: जी,
1: ये मोरुंग होता क्या है?
0: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
0: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी,
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी,
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी,
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है।

0: और संवेदनाएं होती हैं।
1: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
2: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
1: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
3: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
2: जी मालिक, ये बात तो है।
3: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
2: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
3: अच्छा,
2: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
3: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
2: जी मालिक।
1: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
2: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
3: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
1: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
2: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
1: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
3: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा

0: क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
0: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
0: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
0: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
0: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
0: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
2: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
2: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
0: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
0: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
1: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
0: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
1: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
0: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
1: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
2: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
1: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
0: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
1: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
0: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
0: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात यह है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
2: नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम

0: बताइए तो सही।
1: यूजीन, देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
1: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
1: बेटा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात, वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
1: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
2: हाँ जी, बताइए।
1: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
2: हाँ हाँ, अभी लाता है, बस एक मिनट।
3: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
4: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
1: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
1: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।
1: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
0: नहीं।
1: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
0: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
1: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
0: यूं ही?
1: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
0: क्या मतलब?

0: अगर इसकी टांगें खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
1: अच्छा अच्छा, समझी समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
0: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है, वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
1: पर बेटा ये तो
0: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
1: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
0: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
1: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
0: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
1: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
0: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
1: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
1: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ, आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ, लो।
0: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।
7: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
8: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1805 145 पर कॉल करें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

0: प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला तराना ही सुनते हैं गदर फिल्म से।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: स्वर उदित नारायण का है। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने।

राहत फतेह अली खां के स्वर में। और आइए अब सुनते हैं सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म से ये तराना। स्वर यो यो हनी सिंह और सिमर कौर के हैं।

श्रोताओ, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला तराना ही सुनते हैं ऑल इज वेल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। शब्बीर अहमद के गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रेडियो में 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ

0: जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. forming opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on the feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. He stated that the government is ready for discussion since day one. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules and requires proper arrangements. He requested floor leaders of all parties for the duration and the rule under which the discussion will be held. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country. K.C. Venugopal of the Congress and Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party raised the issue of student protests. Speaker Om Birla said the government is ready for discussion on the issue and everyone must come together for the timing of the discussion. As the pandemonium continued, Mr. Birla adjourned the House till 2 p.m. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class INS Malvan at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous warship building. Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Air Staff, was the chief guest at the ceremony. Speaking on this occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh appreciated the Navy for its efforts towards Atmanirbhar Bharat and said that the INS Malvan will play a crucial role in maritime security of the country's coastal region. INS Malvan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat mission uses more than 80% indigenous equipment and technology.
1: As far as naval shipbuilding is concerned, India has always had an edge and we had carried our legacy forward in making ships.

0: 352 करोड़ रुपए से ज्यादा के 70 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत ने गुज़िश्ता 9 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत के आने के बाद तरक्याती कामों और तरक्की के जरिए एक नई शिनाख्त हासिल की है।
1: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज अयोध्या में एक अहम मीटिंग करेगा। भगवान श्री राम लला मंदिर के चढ़ावे से मुतल्लिक जारी तनाजों के दरमियान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मीटिंग के दौरान जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और ट्रस्टी के 3 खाली ओहदों पर गौर करेगा। राम मंदिर के पहले सीईओ के इंतखाब के अमल को भी हतमी शक्ल दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी आज रियासत भर के तमाम 403 असेंबली हलकों में एक साथ बूथ कॉन्फ्रेंसों का इनकाद कर रही है। इस तकरीब से बीजेपी की तंजीमी ताकत में एक नई जहत शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी के पास रियासत में कुल 1,77,516 बूथ हैं। इन तमाम बूथों पर बैक वक्त कॉन्फ्रेंसों का इनकाद करके यूपी बीजेपी एक रिकॉर्ड कायम करने वाली है। इस मौके पर यूपी बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी लहरपुर सीतापुर में, बरेली में होने वाली कॉन्फ्रेंस में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करेंगे, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, लखनऊ में होने वाली कॉन्फ्रेंस की कयादत वजीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा करेंगे। ये जामे प्रोग्राम पार्टी की जमीनी सतह पर तैयारियों को मजबूत बनाने और आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली को बाइख्तियार बनाने का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा चौथे दिन भी शुरू नहीं हो सकी। इंतजामिया ने इन जायरीन को हफ्ते की शाम को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी की खराब मौसम की पेशगोई के पेश नजर रोक दिया था। और राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत में कई नदियों की सतहयाब में इजाफा हुआ है। शारदा नदी पलिया कला लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी में जहां घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब है, वहीं पीलीभीत में दरियाए शारदा के पानी की सतह भी उत्तराखंड के पहाड़ों में मुसलसल बारिश की वजह से काफी बढ़ गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार प्रीति के साथ। सखियों, हर चीज़ समझने और इसकी समझ रखना हमारी समझ या बुद्धि से ही होता है, और ये समझ जानकारी से विकसित होती है। अब ये जानकारी या तो मौखिक रूप से हमें मिलेगी या फिर शिक्षा से, और शिक्षा या एजुकेशन हम सबके लिए आवश्यक है। अब तो शिक्षा का अधिकार सबके लिए है। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल तक, किफ़ायती स्कूल से लेकर मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूल तक सभी हैं। एक सच ये भी है कि स्कूल में पढ़ाई का तरीका, बच्चों पर बढ़ता प्रेशर सवाल खड़े करता है, जिसे लेकर अभिभावक चिंतित भी रहते हैं। यहाँ शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट और प्रचलित हो रहा है, जिसे कहते हैं होम स्कूलिंग। यानी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन न कराकर घर पर ही बच्चे को पढ़ाया जाना, इसका भी एक पूरा व्यवस्थित तरीका है। शुरुआत में एक सुविधाजनक रूटीन के साथ बच्चे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी, प्रकृति और यात्राओं के हिसाब से सिखाया जाता है। आमतौर पर ये अनौपचारिक पाठ्यक्रम की तरह होता है, लेकिन इससे पहले एक अभिभावक के तौर पर हमें तैयार होना होता है बच्चे की होम स्कूलिंग के लिए, क्योंकि बच्चे

0: वो हमें खुद ही पढ़ाना होता है, और होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट में बच्चे के लिए क्या सबसे बेहतर रहेगा इसकी भी लगातार खोज करनी होती है। सबसे पहले होम स्कूलिंग के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, आने वाली चुनौतियों के लिए भी सोचें, बच्चे की इच्छा भी जानें, अपने परिवार से भी बात करें कि वो लोग इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हैं या फिर वो चाहते हैं कि बच्चे को घर में ऐसा माहौल मिले कि उसे घर पर ही पढ़ाया जा सके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होम स्कूलिंग के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही होम स्कूलिंग करा रहे अभिभावकों के अनुभव और इनके ग्रुप भी हैं जो आपका बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब आप होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लें, तब बच्चे के लिए एक पाठ्यक्रम बनाएं, बच्चे को उसकी गति से सीखने दीजिए, एक लचीला टाइम टेबल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ फन वे में सिखाइए। होम स्कूलिंग बिल्कुल मान्य है, इसलिए बच्चे की प्रगति का हिसाब या प्रूफ ज़रूर रखें। जब बच्चे की रुचि आकार लेने लगे तब उसके लिए स्ट्रीम चुनिए। यहाँ हम बच्चे के लिए खास तौर पर होम स्कूलिंग के लिए बोर्ड भी चुन सकते हैं, जिससे वो 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम दे सकेगा। इसकी मान्यता भी है NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके अलावा IGCSE बोर्ड या फिर और भी बोर्ड्स हैं जो बच्चे को होम स्कूलिंग में हेल्प करते हैं। इसके बारे में ऑनलाइन जानकारी ली जा सकती है, जैसे कि ऑनलाइन NIOS के तहत रजिस्टर करने पर आपको एक पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री दी जाती है जिसे आप बच्चे की सीखने की गति से फॉलो करते हैं। ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, बच्चों के लिए सही पाठ्यक्रम चुनना और उसे खुद पढ़ाना होता है। साथ ही बच्चे को लैंग्वेज, म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स में स्पेशल ट्रेनिंग दिलाने का भी काफ़ी समय मिल जाता है। NIOS काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन भी देता है जो कॉम्बिनेशन स्कूल में अक्सर नहीं मिल पाते। हम आगे की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यानी साइंस, इंजीनियरिंग या कॉमर्स या आर्ट्स के हिसाब से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। 10th और 12th के एग्ज़ाम बच्चा जब तैयार हो तब दे सकता है। यहाँ तक कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम की भी सुविधा होती है और मार्कशीट भी मिलती है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि मनचाही स्ट्रीम में आगे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो कौन सा बोर्ड मान्य है और फॉरेन स्टडीज़ के लिए कौन सा बोर्ड हेल्पफुल रहेगा। होम स्कूलिंग आपकी चॉइस भी हो सकती है। कई बार बहुत से बच्चे जिनका बीच में स्कूल छूट जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये अवसर है कि उनकी शिक्षा बंद नहीं होने देता। ये होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो नई नई चीज़ों के बारे में बेहतर विकल्प के हिसाब से हम सोच सकते हैं और जितनी जानकारी रहेगी उतना ही अच्छा रहता है। तो चलिए सखियों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में कुछ और आगे। सखियों, जीवन कभी रुकता नहीं, कभी हम बच्चे होते हैं फिर उम्र बढ़ती है, और सखियों वृद्धावस्था भी जीवन का एक सच ही है। अब ये कड़वा होगा या मीठा कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता कि अपने ही रहेंगे कि पराए हो जाएंगे। आइए सुनते हैं कहानी एक बार कह देता, पूजा कालरा से।
1: दीवारें चुप्पी साधे बस मेरी ओर बेबस हो देखती रहती, सीलन के कारण पानी रिश्ता मानो मेरी बेबसी पर आंसू बहा रही हो। अंधेरी खाई कहूं या कुआं, बात तो सिर्फ 5 घंटे की थी, कहाँ रुकने वाले थे ये आंसू, फिर छलक पड़े। उस दिन शाम को संध्या का दीपक जला, ज्यों ही आरती कर मंदिर से बाहर आई, देखा हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए कविश सामने खड़ा था। उसने मेरे पैर छुए और खुशी खुशी बताया, नौकरी में मेरी तरक्की हो गई है और लखनऊ तबादला भी, ये तो बहुत खुशी की बात है। कविश, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। कविश ने कहा, अब हम सब लखनऊ

शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा, बेटा इस घर में आज तक ताला नहीं लगा। मैं अपने घर में ताला लगा नहीं देख सकती, मैं यहीं रहूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, हम तो हमेशा के लिए ही लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं, ये घर तो हमें बेचना पड़ेगा। दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा। कलेजे पर पत्थर रख जैसे तैसे अपने मन को समझाया, सिर्फ अपने कविश की खुशी के लिए। घर का कोना कोना देख मन टूट कर बार बार बिखर रहा था, जैसे यादों के मोती टूट कर इधर उधर बिखर रहे हों। देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सारे मोतियों को फिर से पल्लू में बांध कर सहेजना चाहती थी। पिरो लूंगी फिर इन पलों को मजबूत धागे में, काश वो पलों के मोती मुझे कोई लौटा दे। इतने में कविश ने आवाज दी, माँ टैक्सी में सामान रखवा दिया है, चलो ताला लगा दो। उसका कहना लड़खड़ाते कदमों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। घर से स्टेशन के बीच उस 40 मिनट की दूरी में लगा सामान का बोझ जैसे सीने पर लदा हो, शरीर खच्चर बन बस खींचा जा रहा हो। स्टेशन आ चुका था, पहुंचकर पता चला ट्रेन 5 घंटे देरी से चल रही है। कविश ने चिंतित भाव से कहा, 5 घंटे तो यहां बैठे बैठे परेशान हो जाओगी माँ। सिर पर हाथ रख करीब 5-6 चक्कर इधर उधर हो काटे उसने। कुछ हिचकिचाहट और उतावलापन साफ झलक रहा था उसके चेहरे पर। माँ हूं आखिर, उसके चेहरे के भाव तो पढ़ ही सकती थी। पर कविश के मन में क्या चल रहा है ये पढ़ पाना आज कुछ मुश्किल हो रहा था। कुछ सकुचाकर और सोचते हुए बोला, चलो माँ 5 घंटे यहां बैठे बैठे परेशान होने से अच्छा तुम्हें एक जगह ले चलता हूं, वहां आराम कर लेना, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मेरे बहुत मना करने के बाद भी कविश नहीं माना। उसका ये संभ्रम देख मेरा मन बहुत घबरा रहा था। ये कैसी जिद पकड़ बैठा है कविश, आखिर अपने साथ रिक्शा में बैठा वो मुझे ले ही गया। कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कविश आराम करने मुझे यहां क्यों लाया, सिर्फ 5 घंटे की ही तो बात थी। यहां आराम करो माँ, मैं 3-4 घंटे में वापस आता हूं। मेरे सिर पर बच्चों की तरह हाथ फेर कर मुस्कुराता हुआ चला गया, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। ये देख मेरी धड़कनें तेज हो गईं, कहीं ना कहीं संदिग्ध भावों से मेरा मन मुझे टटोल रहा था। 5 घंटों के लिए कविश मुझे यहां क्यों छोड़ गया। मैं खिड़की पर बैठी इंतजार की घड़ियां गिन रही थी। दीवार से पानी यूं ही रिस रहा था। पिछले 5 सालों से रुका ही नहीं, इन 5 सालों में 5 घंटे गुजरे कहां थे। विरह के आंसू तो बहने ही थे, सोचकर गला फिर रुंध गया, आंसू फिर झरझर बहने लगे। खिड़की से दूर कहीं निगाह टिक गई, ये जाना पहचाना सा चेहरा, ये तो यहीं आ रहे हैं। आगे बढ़कर गई तो देखा उसकी पड़ोसी सहेली नीलम थी। देखकर आश्चर्य तो हुआ ही पर खुशी भी, नीलम तुम यहां। नीलम आश्चर्यचकित हो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरे जा रही थी। मैंने कहा, मुझे नहीं पहचाना, मैं सुजाता। लड़खड़ाती जबान से बोली, पहचान लिया मगर तुम तो 5 साल पहले। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, उस सांस लेते हुए सुजाता ने कहा। हाँ लखनऊ जाना था 5 साल पहले, मगर मेरी बदकिस्मती देखो वृद्धाश्रम ले आई। दिल बैठ गया बताते हुए, कविश मुझे यहां छोड़ गया था, 5 घंटे कह के गया था, 5 साल बीत गए, अब तो आंसू भी नहीं संभलते। फिर बह निकले, सुजाता खुद को और अपने मन को संभालो, लखनऊ तो कभी गए ही नहीं तुम्हारा बेटा और बहू, वो तो आज भी उसी घर में रह रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हें बताते हुए, दिल थाम लो सुजाता, कहीं कलेजा मुंह को ना आ जाए। कविश तो तुम्हें 5 साल पहले ही मार चुका है, हर साल तुम्हारा श्राद्ध कर रहा है। लानत देती हूं ऐसे बेटे पर, कहते कहते नीलम ने मुझे गले से लगा लिया। उसके कंधे पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोई मैं। सुजाता थोड़ी देर पहले तक मैं गलतफहमी में थी कि ईश्वर कविश जैसा बेटा हर किसी को दे। आज तक अपनी माँ को नहीं भूला, माँ चल बसी अपना प्रमोशन तक ठुकरा दिया। लखनऊ जैसे बड़े शहर ना जाकर छोटे से शहर में आज भी अपनी माँ की यादों के साथ इसी घर में रह रहा है। पर अब समझ में आ रहा है,
प्रमोशन का तो सिर्फ रचा रचाया एक

0: नाटक था। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही थी। एक मेरा बेटा अमित है जो मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा है। ये सब देखने के बाद इस दुखी मन को एक कम से कम सुकून तो है। कहकर छोड़ गया वृद्धाश्रम, आंखों में धूल झोंक कर तो नहीं गया। नीलम के मुंह से ये सब सुन सुजाता की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब फिर उमड़ पड़ा। मुझे छोड़कर जाते समय कविश की वो मुस्कुराहट क्या मुझसे छुटकारा पाने की थी? मैं 5 साल तक मरती रही ये सोचकर शायद वो मुस्कुराहट मेरी ओर से बेफिक्री थी। उसने तो अपनी माँ का 5 साल पहले ही बेफिक्र होकर अंतिम संस्कार कर दिया था। एक बार कह देता मेरा कविश, माँ तेरा बोझ और नहीं उठाया जाएगा। सामान बांधकर स्टेशन तक जाने का तमाशा नहीं करना पड़ता। दुख सहकर जी लेती, कैसे जीऊँ इस बोझ के साथ अब? उसने तो जिंदा माँ को ही मार दिया। शायद दीवारों को यह एहसास था मेरे मरने का। मौन होकर वो मेरी अपनी मेरी मौत पर आंसू बहा रही हैं पिछले 5 साल से।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी कहानी एक बार कह देता, पूजा कालरा से। चलिए अब बढ़ते हैं सेगमेंट में आगे और बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश की। सखियों, आपने जोजिला सुरंग परियोजना के बारे में सुना होगा, तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में वर्ष भर संपर्क स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करती है। जैसा कि आप जानती हैं कि कश्मीर लद्दाख बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं और बहुत बर्फबारी होती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ये दोनों ही। ये टनल राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर बालटल और मीनामर्ग के बीच बन रही लगभग 14 किलोमीटर लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल है। ये परियोजना दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में से एक में आए आकार लेने वाली एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इस सुरंग में आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, स्वचालित अग्नि पहचान प्रणाली, उन्नत सीसीटीवी निगरानी और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा क्रॉस पैसेज सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। हिमपात और भूवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए इस परियोजना में कट एंड कवर खंड भी हैं, हिमदीर्घाएं, कैच डैम, हिमस्खलन सुरक्षा संरचनाएं, पहुंच मार्ग और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये परियोजना संपर्क, पर्यटन और रणनीतिक गतिशीलता में परिवर्तन का माध्यम बनने वाली है। परियोजना पूरी होने पर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और लद्दाख के मीनामर्ग तक यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब करीब 30 मिनट तक का रह जाएगा। इस सुरंग से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर होने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने, व्यापार सुगम होने और सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इस दृष्टिकोण से भी इन क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क बना रहने से भारतीय सेना के लिए भी बहुत सुविधा हो जाएगी। उपकरण आपूर्ति और रसद की आवाजाही तेज और अधिक कुशल हो सकेगी, जिससे रणनीतिक रूप से हम मजबूत और हमेशा तैयार रह सकेंगे। जोजिला सुरंग का बनना भारत के तकनीकी विकास को भी दर्शाता है। राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा के लिए भौगोलिक चुनौतियों को पार कर नई राह बनाना नए भारत की क्षमता का भी प्रमाण है। देश की सीमाओं तक सभी मौसम में पहुंच राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए आवश्यक है। जोजिला सुरंग का महत्व इस दृष्टि से कई गुना बढ़ जाता है। तो सखियों, ये था जोजिला सुरंग के बारे में थोड़ी जानकारी, और यहाँ रुकते हैं स्पॉट के लिए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: वेलकम बैक सखियों आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार और आपके साथ मैं हूं प्रीति सखियों कभी सोचा है कि कैसे सेम रूटीन हर रोज फॉलो करते करते जीवन बीत जाता है कैसे उन्हीं चीज़ों में दिन रात बीतते हैं ये कुछ दिनचर्या में उलझ कर रह जाने जैसा है चाहे आप गृहिणी हो या कामकाजी व्यक्ति इससे आगे के लिए समय ही नहीं बचता और ये बात एंड ऑफ द डे बहुत अखरती भी है इस पूरी रूटीन में आप कहाँ हैं जब ये रियलाइज होने लगे ना तब दिनचर्या के पैटर्न को डिकोड करना शुरू कीजिएगा समय कहाँ जाया हो रहा है उसे पहचानिएगा वैसे भी आपने सुना ही होगा स्टक इन अ लूप इस लूप से उतरने पर ही इसका घूमना बंद होता है इस एक सी दिनचर्या का होना सिर्फ होम मेकर्स के लिए ही नहीं बल्कि मीनिंगलेस जॉब हो या फिर एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल भी हो सकती है जब तक कि हम खुद इस पैटर्न को समझते नहीं हैं तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलता इसमें उलझे मत रहिए कुछ नई चीज़ों की लिस्ट बनाइए और इनके लिए समय को बचाना शुरू कीजिए मानसिक रूप से तरोताज़ा बने रहने के लिए इस पैटर्न को तोड़ना ज़रूरी होता है हर रोज़ एक नया कार्य शुरू कीजिए जिससे जीवन अर्थपूर्ण बन सके फिलहाल इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग

先を。先を、हमें और कोई नहीं बचाने आता। ये बात हम जितना साफ साफ देख पाए उतना ही अच्छा है। कभी कभी शुरुआत इसी समझ के साथ होती है, और कुछ भी प्रारंभ करना एक अद्भुत यात्रा का पहला कदम बन जाता है। लेकिन ये शुरुआत ही तो शुरू नहीं होती, है ना? चलिए इसे संभव बनाते हैं। कहने का अर्थ ये कि जो स्किल सीखना चाहती हूँ उसके बारे में जानिए, उससे जुड़ी सामग्री अपने साथ पहुँच में रखिए, जिससे उठते बैठते उन चीज़ों को पढ़ा जा सके। रुकावटों का पूरा या सबसे करीब का समाधान खोजिए। कुछ नया सीखने की यात्रा तब भी रोचक और आत्म प्रेरक बनी रहती है जब हम यात्रा की मंजिल और उसके रिवॉर्ड की भी जानकारी रखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय से जुड़ी बहुत सारी जानकारी जुटाई जा सकती है, नए तरीके सीखे जा सकते हैं। इस तरह प्रारंभ को अवश्यंभावी बनाया जा सकता है। जानना सीखना हमें ही तो शुरू करना होता है। यात्रा तभी संभव है जब उसे प्रारंभ किया जाए। किसी ने कहा भी है, जब हम किसी विषय को बार बार पढ़ते रहते हैं तो वो हमारे लिए उतना ही आसान होता चला जाता है। तो चलिए रुक करते हैं अगले गीत का।

तो सखियों चलते चलते रुक करते हैं संत कबीरदास की वाणी का। कबीरदास जी जितने सुनने में रोचक हैं, उतनी मर्म में गूढ़ उनकी सीख है कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। और कबीर की उल्टी वाणी का क्या कहना कि बरसे कंबल भीगे पानी। तो इनके अर्थ खोजिए अपने अर्थों में और रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। दीजिए प्रीति को इजाजत। नमस्कार।

तो अभी बहनें सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई कुछ गजलें।

श्रोता जगजीत सिंह की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: India Meteorological Department IMDS issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over parts of Gujarat, parts of Maharashtra, Konkan and Goa till tomorrow. According to IMD, Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Punjab, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Vidarbha will experience heavy to very heavy rainfall during the next 2 to 3 days. In China Open Badminton, India's PV Sindhu will take on compatriot Unnati Hooda in the women's singles round of 32 in Changzhou today. In the men's singles, Lakshya Sen will take on the Japanese player Yushi Tanaka in round of 32 today. Meanwhile, Ayush Shetty booked his place in the pre-quarterfinals after defeating Indonesia's Alvi Farhan 21-17, 5-21, 21-17 in the men's singles clash today. In the men's doubles, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsa Karunan lost to China's Wang Chang and Liang Weikang in the round of 32 today. News just in, Lok Sabha has been adjourned for the day, while Rajya Sabha has been adjourned till 3 p.m. today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Stalemate continues in Parliament over neat paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship, to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific. Poll meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam. Red alert for heavy rainfall in Gujarat, central Maharashtra and parts of Goa for the next 2 days. And Indian shuttler Ayush Shetty enters pre-quarterfinals, defeating Indonesia's Alvi Farhan in China Open Badminton Tournament. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
2: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहती है वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
3: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार

0: किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
1: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
2: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
3: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है

0: के राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां

0: 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे पंडित सी आर व्यास का राग मिश्र कौशिया में गायन, तत्पश्चात उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का मिश्र तिलक कामोद में गायन।

श्रोता, इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। साथियों, पुराने गीत केवल धुन नहीं होते बल्कि भावनाओं, रिश्तों और जीवन की खूबसूरत यादों का खजाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नगमे से, जिसे हमने लिया है जोशीला फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। साहिर के लिखे गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

साथियों, पुराने गीतों की यही तो खासियत है कि समय बदल जाता है लेकिन इनका जादू कभी कम नहीं होता। तो आइए अगला गीत सुनते हैं नीलकमल फिल्म से मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत रचना साहिर की है और संगीत से संवारा है रवि ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गीत जो आज भी हर संगीत प्रेमी को पसंद है। फिल्म का नाम है लीडर। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए आप सुनते हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। पहला गीत हमने लिया है राज फिल्म से।

अगला गीत आइए सुनते हैं, कुछ कुछ होता है फिल्म से, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत आइए सुनते हैं हीरा पन्ना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का गीत कुमार सानू और कविता कृष्णामूर्ति के स्वरों में। गीत रचना महबूब की है और धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने।

श्रोता, इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का अग्र केंद्र है। संध्या के 5 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। उन्होंने इस घटना को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा तथा मर्यादा के विरुद्ध बताया। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्ति परक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में डीजी दुकान विषय पर होगी चर्चा, साथ ही शिवम यादव से सुनेंगे वार्ता, विषय है एआई बायस और डिजिटल नस्लवाद, और जीने की कला में आंतरिक भय से मुक्ति विषय पर की जाएगी कुछ बात। शाम 6:00 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्य लोक का। आज के कार्यक्रम में बूंद बूंद का मोल है बड़ा अनमोल विषय पर होगी चर्चा, साथ ही सुनिएगा वार्ताकार डॉक्टर अनुपम सिंह दीक्षित से देवेंद्र की बातचीत, विषय रहेगा बकरी पालन प्रबंधन। कार्यक्रम मजदूर मंडल में विश्व पटल पर महिलाएं विषय पर होगी चर्चा, डॉक्टर रमेश चंद्र द्वारा लिखित कहानी सुनेंगे जिसका विषय रहेगा 1 और 1 11।

शाम 7 बजे सुनेंगे अशोक कुमार सक्सेना की वार्ता। विषय रहेगा राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के विकास का पर्याय है हिंदी। कार्यक्रम विविधा में शाम 7:31 पर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और रात्रि 8:15 पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक और अनेक। रात्रि 8:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 10 बजे सुनिएगा संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन। कलाकार होंगे शुभ्रा तलेगांवकर और पंडित जसराज। ये तो था आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास। कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना, और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन। गायक कलाकार हरिहरन से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनेंगे डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह की वार्ता। विषय रहेगा मुर्गी पालन में ध्यान देने योग्य बातें। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बहु औषधीय प्रतिरोधक क्षय रोग विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रदीप शर्मा। कल सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा, और 9:45 पर सुनिएगा लोक संगीत। 10:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का। अभी आपने जाना आज के सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप।

विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10 और 30 सेकंड। आइए आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

आल एक अनजान कथा संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और आवाजें थी महेंद्र कपूर, साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की। मोहम्मद रफी की आवाज से सजे अगले भक्ति गीत को हमने लिया है फिल्म 10 लाख से। रचना प्रेम धवन की है और संगीतकार हैं रवि।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

ये भक्ति गीत हमने लिया था फिल्म गुड्डी से। संगीत वसंत देसाई का था, आलेख गुलजार का और आवाज थी वाणी जयराम की। ए आर रहमान के संगीत से सजे अगले भक्ति गीत को हमने लिया है फिल्म रॉक स्टार से। आवाजें हैं ए आर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की।

भी 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार युवा साथियों, मैं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त अपूर्वा परिहार स्वागत करती हूं अपने सभी युवा श्रोताओं का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, युववाणी केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की सोच, उनके सपने, उनके नवाचार, उनकी रचनात्मकता और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त मंच है। यहाँ विचारों को आवाज़ मिलती है, अनुभवों को पहचान मिलती है और सकारात्मक बदलाव की कहानियाँ पूरे समाज तक पहुँचती है। दोस्तों, हमें भी आज इसी मंच के माध्यम से आप सभी से जुड़ने और एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है जो आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले की छोटी सी किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान या फिर आपकी पसंदीदा मिठाई की दुकान भी ऑनलाइन आ सकती है और वो भी बिना किसी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह निर्भर हुए? अगर आपका जवाब कैसे है तो आज का विषय आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डिजी दुकान की। दोस्तों, डिजी दुकान नाम से ही समझ आ रहा है, डिजिटल दुकान। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुकानदार अपनी दुकान और अपने सामान की जानकारी ऑनलाइन जोड़ सकते हैं, यानी उनकी दुकान अब सिर्फ गली या शहर तक सीमित नहीं रहती बल्कि इंटरनेट के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, डिजी दुकान ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है। अब आइए थोड़ा जानते हैं ONDC के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए हमारे शहर में बहुत सारी सड़कें हैं जो अलग अलग जगहों को जोड़ती हैं। उसी तरह ONDC एक डिजिटल नेटवर्क है जो दुकानदारों और ग्राहकों को जोड़ने का काम करता है। यानी अगर कोई दुकानदार डिजी दुकान के माध्यम से ONDC से जुड़ जाता है तो उसके सामान को कई अलग अलग ONDC से जुड़े ऐप्स पर देखा जा सकता है। ग्राहक अपनी पसंद के ऐप से ऑर्डर कर सकता है और दुकानदार सीधे उन्हें सामान बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? दोस्तों, इससे छोटे व्यापारियों को भी ऑनलाइन अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है, उन्हें ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच मिलती है और ग्राहकों को भी अपनी पसंद की स्थानीय दुकानों से खरीदारी करने का विकल्प मिलता है। दोस्तों, आज का दौर डिजिटल इंडिया का दौर है, ऐसे में कई नई टेक्निकों को समझना और अपनाना सिर्फ व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि हम युवाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, खास उनके लिए जो भविष्य में अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो डिजी दुकान और ONDC आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की चर्चा, लेकिन चर्चा संपन्न करने से पहले है आपके लिए आज का सवाल। दोस्तों, हमारा आज का सवाल जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा है। जरा दिमाग लगाइए, अगर मैं कहूं कि कश्मीर का एक प्रसिद्ध धार्मिक मेला ऐसा है जिसका नाम सुनते ही स्वादिष्ट स्वीट डिश की याद आ जाती है, तो क्या आप उसका नाम बता पाएंगे? आप उसका जवाब ढूंढिए। हम मिलेंगे आपसे इस गीत के बाद।

दोस्तों, संगीत से पहले हमने आपसे पूछा था आज का सवाल कि कश्मीर की वादियों में आयोजित होने वाला ये प्रसिद्ध धार्मिक मेला कौन सा है, जिसके नाम में ही एक पारंपरिक भारतीय मिठास की झलक मिलती है। हमें उम्मीद है कि आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही उत्तर सोच लिया होगा। तो हम आपको बता दें कि सही जवाब है मेला खीर भवानी। ये प्रसिद्ध मेला जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला स्थित माता रागन्या देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये मेला आस्था, संस्कृति और परंपरा का सुंदर संगम है, जहां श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं।

0: इसी के साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों हमारी चर्चा में हमने बात की कि किस तरह डिजिटल तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया। आज तकनीक ने हमारे काम करने, सीखने और सोचने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव ला दिया है, लेकिन हर नई तकनीक अपने साथ कुछ नए सवाल भी लेकर आती है। आज जब AI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, चाहे वह मोबाइल एप्लीकेशन हो, ऑनलाइन सुझाव हो, पढ़ाई हो, काम करने का नया तरीका हो, तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण विषय भी आता है जिसका नाम है AI बायस और डिजिटल नस्लवाद। दोस्तों क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मशीन के फैसलों में भी पक्षपात दिखाई दे? क्या तकनीक, जिसे निष्पक्ष माना जाता है, अनजाने में किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ भेदभाव कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो हमें एक जिम्मेदार डिजिटल भविष्य के लिए किन बातों का समझना जरूरी है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वार्ताकार शिवम यादव। तो आइए सुनते हैं शिवम यादव को और समझते हैं AI बायस क्या है और डिजिटल नस्लवाद किस तरह सामने आता है।
1: साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में AI हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, चाहे वह नौकरी की भर्ती हो, सोशल मीडिया हो या अन्य सेवाएं हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह तकनीक पूरी तरह निष्पक्ष है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि AI सिस्टम वही सीखता है जो डेटा उन्हें दिया जाता है। आखिरकार AI सिस्टम को डेवलप करने वाले हम मनुष्य ही तो हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि AI बायस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बायस डेटा किस तरह का होता है। दरअसल जो बायस शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है निष्पक्षता का ना होना, किसी न किसी तरीके से एक ही पक्ष की ओर झुकाव होना। तो बायस डेटा वह डेटा है जो निष्पक्ष नहीं होता और किसी एक पक्ष के झुकाव में होता है। AI बायस डेटा को हम आज इंटरनेट पर बखूबी देखते हैं। किसी भी कंपनी के डेटाबेस को अनफेयर तरीके से फेच करना, उसे प्रमोट करना और एल्गोरिदम को कंप्रोमाइज करना AI बायस कहलाता है। जैसे उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो AI का डिजाइन और उसके रूल्स हैं वो एल्गोरिदम के हिसाब से कई बार बायस हो जाते हैं, क्योंकि उसे जो बनाने वाले लोग हैं वो किसी न किसी एक विशेष वर्ग से आते हैं, किसी न किसी एक विशेष कंपनी के समूह से आते हैं, जिसकी वजह से जो अन्य लोग होते हैं टीम के उन्हें मौका नहीं मिल पाता। और इसी की वजह से कई बार होता है कि AI हमारे साथ भी पक्षपात करता है। जैसे आपको उदाहरण दूं, तो हमारे फ़ोन में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, जिसे हम फेस सेंसर भी कहते हैं, वो फेयर स्किन्ड पीपल के लिए बनाया गया है। गोरे लोगों ने उसे डिज़ाइन किया, कई बार डार्क स्किन्ड लोगों का फेस AI मैच नहीं कर पाता या रिजेक्ट कर देता है। जैसा कि हमने देखा भी होगा कि कई बार हम अंधेरे में अपना फेस स्कैन करने की कोशिश करें तो हमारा लॉक नहीं खुलता। बड़ी कंपनीज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, जैसे मेल कैंडिडेट्स या एम्प्लॉइज ज़्यादा हैं तो फीमेल का नाम डेटाबेस से हटा दिया जाएगा या वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि AI उस डेटाबेस को फेच नहीं कर पाता, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल डेटाबेस है वो मेल ओरिएंटेड होता है। इसी के साथ में जो अगला बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो AI सिस्टम में विविधता का न होना भी है, क्योंकि AI बनाने वाली टीम किसी एक विशेष समूह से है तो वो कम से कम अपने साथ के जो लोग हैं उन्हें लेके नहीं चल पाती है। वो केवल एक व्यक्तिगत समूह या एक मुट्ठी भर के लोगों को लेके ही साथ चलती है और उन्हीं के हिसाब से सारे एल्गोरिदम डिज़ाइन होते हैं, उन्हीं के हिसाब से डेटाबेसेस को मॉडिफाई किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि अगर एक कंपनी के प्रोजेक्ट में 4 या 6 लोग काम कर रहे हैं तो केवल 3 की सुनी जाती है और जो 3 लोग रह जाते हैं उनकी वजह से हमारा AI सिस्टम भी मॉडिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि वो लोग कुछ अच्छा दे सकते हैं पर उसके लिए उन्हें अवसर नहीं दिया गया। तो ये एक तरह का डिजिटल रेसिज्म भी है। इससे मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। पहला बिंदु ये है कि समाज में घृणा पैदा होती है। आप चाहे प्रोफेशनल हों, चाहे एजुकेशनल हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, पर अगर आपके साथ किसी न किसी तरह से भेदभाव किया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके मन में घृणा भी पनपेगी। जैसा कि हम आए दिन सोशल मीडिया पर रीलों के माध्यम से देखते रहते हैं, समाज का एक वर्ग दूसरे को अपशब्द

0: सत्य कहने से बिल्कुल नहीं चूकता, वो केवल इसी डिजिटल रेसिज्म की वजह से है। इसी तरह से सर्च इंजन में स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट किया जाता है। कुछ कम्युनिटीज़ को एआई से हुए रेसिज्म की वजह से कई प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया जाता है या उनकी एक्सेस लिमिटेड कर दी जाती है। और जो सबसे बड़ा बिंदु मुझे देखने को मिला वो जेंडर डेटा का मिसयूज है। कई बार हमें पता होता है कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें फीमेल का डेटा है, तो वहाँ से हम कई बार उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी मेल आईडी को फेच कर लेते हैं। उसके बाद में जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो कई बार उनके साथ फ्रॉड भी करते हैं, कई बार उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। ये अक्सर कर देखने को मिला है। फ्रॉड्स के सबसे ज़्यादा केसेस मेल के साथ भी देखने को मिले हैं। आइए हम इसके दुष्प्रभावों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला दुष्प्रभाव वो ये है कि समाज में असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई किसी जाति का व्यक्ति है वो दूसरी जाति के लिए अपशब्द कह रहा है, या एक किसी व्यक्तिगत समूह का व्यक्ति वो दूसरे समूह को नहीं अपना पा रहा। इस इनइक्वालिटी से हमारे देश का भला नहीं हो सकता, विश्व का तो भला क्या ही होगा। इसके अलावा जॉब्स के सेक्टर में हम देखते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में देखते हैं, और जस्टिस सिस्टम में भी देखा जाता है कि कई सारे अनफेयर डिसीजंस होते हैं। जॉब्स में आपने देखा होगा कि 10 लोगों में से केवल 2 लोगों को प्राथमिकता दी गई, बट वो कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज डेटा के थ्रू पहुंचे। बाकी के लोगों को उस तरह का प्रायोरिटी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एजुकेशन में अक्सर कर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते, वो भी इसी AI बाइज डेटा की वजह से होता है। इन सबका एक जो जनाधार है वो एक सिरे से खारिज होने लगा है, और जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मिस्ट्रस्ट क्रिएट होने लग गया है, या मैं कहूँ कि लोगों का लोगों पर भरोसा नहीं रहा, लोगों का इंटरनेट पर भरोसा होना कम हो गया है, और इसने सबसे ज़्यादा समाज को बांटने का काम भी किया है। आइए, ये बिंदु तो हमने डिस्कस किए ही, इनके समाधान की ओर भी चलते हैं। इनके समाधान में जो पहला बिंदु है वो ये है कि डाइवर्स और अपडेटेड डेटा सेट्स का उपयोग करें। विविधताएँ होनी चाहिए और हम अपने डेटा सेट्स को आए दिन अपडेट करते रहें। AI के भी ऑडिट्स हों और वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। डिजिटल अवेयरनेस और लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उसे सीखना नहीं चाहते हैं, आप उसे आगे ले जाना नहीं चाहते, तो आप छोटा सा स्मार्टफोन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वेब बहुत बड़ा एक नेटवर्क हो गया, उसे हम किस तरह से डील करेंगे। चौथा एक जो बिंदु है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छे लॉज बनाए जाएं जिससे डिजिटल रेसिज्म को रोका जाए, AI डेटा कंप्रोमाइज होने से रोका जाए, और उनके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशंस का भी प्रावधान हो। AI का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, तो मैं इसका निष्कर्ष आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसे किस तरह से बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। AI का उद्देश्य मानव जीवन को आसान बनाना है, न कि उसे जटिल बनाना। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे समझदारी से विकसित करें, विविध जांच पड़ताल के साथ संतुलित डेटा का प्रयोग करें, और समय समय पर सिस्टम की जांच करके अपडेट भी करते रहें, क्योंकि एक संतुलित, समान और न्यायपूर्ण समाज अगर हम चाहते हैं तो हमें हमारे AI सिस्टम्स को भी वैसा बनाना होगा जिस तरह की उम्मीद हम रखते हैं।
1: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे वार्ताकार शिवम यादव को। अब आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, जानकारी और जागरूकता ही किसी भी चुनौती से निपटने की सबसे बड़ी ताकत होती है। अभी हमने बात की तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों की, जहां सही जानकारी हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, और जब बात आती है स्वास्थ्य की तो समय पर सही जानकारी और सावधानी दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी कड़ी में आज के हमारे सेगमेंट आइए जाने में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंदीपुरा वायरस की। दोस्तों, वायरस से जुड़ी खबरें अक्सर लोगों में चिंता पैदा कर सकती हैं, लेकिन सही जानकारी, सावधानी और समय पर डॉक्टर की सलाह से हम कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं चंदीपुरा वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या है, और इसके बचाव के लिए हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होगा सेगमेंट आइए जाने। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय समय पर कुछ ऐसे संक्रमण सामने आते हैं जिनके बारे में सही जानकारी होना जरूरी होता है। चंदीपुरा वायरस भी ऐसा ही एक संक्रमण है जिसके प्रति हमें जागरूक रहने की जरूरत है। ये वायरस एक ऐसा वायरल संक्रमण है

जो विशेष रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित कर सकता है। इसका नाम महाराष्ट्र के चंदीपुरा गांव के नाम पर रखा गया, जहां पहली बार इस वायरस की पहचान हुई थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। दरअसल दोस्तों, ये वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी जैसे छोटे कीड़ों के काटने से फैल सकता है। इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखना और कीड़ों से बचाव के उपाय अपनाना जरूरी है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। दोस्तों, कई बार शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य बुखार जैसे ही लग सकते हैं, जैसे तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी या बेचैनी महसूस होना, शरीर में कमजोरी आना। लेकिन अगर बच्चों को बुखार के साथ अत्यधिक सुस्ती, असामान्य व्यवहार, दौरे पड़ना या बेहोशी जैसी स्थिति दिखाई दे तो इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, किसी भी बीमारी से बचने का सबसे पहला कदम है सावधानी और जागरूकता। इससे बचाव के लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने घर और आसपास साफ सफाई बनाए रखें, बच्चों को ऐसे स्थानों पर जाने से बचाएं जहां कीड़ों का खतरा ज्यादा है, रात में सोते समय मच्छरदानी या अन्य सुरक्षा का उपाय करें, और सबसे जरूरी, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये हमने बात की चंदीपुरा वायरस के बारे में और जाना कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सबसे जरूरी है सही जानकारी और जागरूकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी, किसी समस्या या किसी अनिश्चित परिस्थिति के बारे में सुनकर हमारे मन में डर पैदा हो जाता है और यही डर धीरे धीरे हमारे आंतरिक भय का रूप ले सकता है। दोस्तों, भय एक स्वाभाविक भावना है। हर इंसान के मन में कभी ना कभी डर आता है, कभी असफलता का, कभी भविष्य की चिंता का, कभी किसी अनजानी परिस्थिति का। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बना सकते हैं। और इस भय से मुक्ति का पहला रास्ता है इसे स्वीकार करना। हमें ये समझना होगा कि डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना हमारे विकास को रोक सकता है। जब हमें किसी विषय की सही जानकारी मिलती है तो हमारा डर कम होने लगता है। जैसे किसी बीमारी के बारे में अफवाहें सुनकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन जब हम उसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में सही जानकारी लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। दोस्तों, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि सकारात्मक सोच, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करना सीखें। दोस्तों, समस्या पर ध्यान देने के साथ साथ उसके समाधान पर भी विचार करें और सबसे जरूरी, अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारा आत्मविश्वास और हमारी जागरूकता हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। इसलिए याद रखिए, डर अंधेरे की तरह होता है और ज्ञान व आत्मविश्वास उस रोशनी की तरह है जो उस अंधेरे को दूर कर देता है। तो आइए अपने मन के भीतर छिपे डर को पहचानें, उसे समझें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।

दोस्तों, बारिश की हर बूंद प्रकृति का अनमोल उपहार है, लेकिन सवाल है क्या हम इस उपहार को सहेज पा रहे हैं। साथियों, इसी सोच के साथ कैच द रेन अभियान हमें संदेश देता है, जहां भी गिरे, जब भी गिरे, बारिश के पानी को सहजें। तो दोस्तों, इस मानसून एक संकल्प लें कि पानी की बर्बादी रोकेंगे और हर बूंद का सम्मान करेंगे, क्योंकि जल है तो कल है। साथ ही हमें भी आज्ञा दें युववाणी कार्यक्रम संपन्न करने का। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

कार्यक्रम ग्राम्य लोक सुनने वाले सभी भैया बहनों को मुक्ता सिकरवार की राम राम। साथियों, सुबह उठते से ही हमारी दिनचर्या पानी से शुरू होती है। पीने के लिए पानी चाहिए, चाय बनाने के लिए, नहाने, कपड़े धोने, भोजन बनाने, घर की सफाई, सभी के लिए हमें पानी चाहिए। यानी हमारे जीवन का ऐसा कोई काम नहीं जो पानी के बिना पूरा हो सके। इसीलिए कहा गया है, जल ही जीवन है। पानी यानी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में ठंडक का एहसास होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस पानी को हम बिना सोचे समझे बहा देते हैं, वही पानी किसी दूसरे के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। किसी गांव की महिलाएं आज भी कई किलोमीटर दूर से सिर पर खड़े रखकर पानी लेकर आती हैं। कई किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बादलों का इंतजार करते हैं। वहीं घर आंगन और गाड़ियां धोने में सैकड़ों लीटर पानी बहा दिया जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च कर दिया जाता है। साथियों, प्रकृति ने हमें जल का अनमोल उपहार दिया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये असीमित है। धरती पर पानी तो बहुत है, पर पीने योग्य मीठा पानी कम है। यही कारण है कि दुनिया के कई हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने जल संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हमारे पूर्वज जल संरक्षण का महत्व अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने तालाब बनाए, कुएं खोदे, बावड़ियां बनाई और वर्षा जल को सहेजने की परंपरा विकसित की। यही कारण है कि कम वर्षा होने पर भी पानी की कमी उस समय महसूस नहीं होती थी। इसलिए अब समय आ गया है कि हम उन परंपराओं को फिर से अपनाएं। देखा जाए तो दोस्तों, जल बचाने के लिए किसी बड़े अभियान की ज़रूरत का इंतज़ार नहीं करना है हमें। शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं, जैसे कि दांत साफ करते समय नल बंद रखें, जहां ज़रूरत हो वहीं पानी का उपयोग करें। यदि नल या पाइप से पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। घरों की छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को जमीन में पहुंचाकर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। किसान भाई भी यदि ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियां अपनाएं तो कम पानी में अधिक सिंचाई संभव है। इससे पानी की बचत भी होगी और खेती भी अधिक लाभकारी होगी। रहीमदास जी का ये दोहा आज भी हमें प्रेरणा देता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन, सम्मान और समृद्धि का आधार है। जल संरक्षण हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। यदि हर परिवार प्रतिदिन थोड़ी सी भी पानी की बचत करे तो पूरे देश में करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है। साथियों, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है और बूंद बूंद से ही भविष्य संवरता है। आज बचाई एक बूंद कल किसी प्यासे के लिए जीवन बन सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना है कि हम पानी की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे, बिना ज़रूरत पानी नहीं बहाएंगे और वर्षा जल का संरक्षण करेंगे। अपने बच्चों और आसपास के लोगों को भी जल बचाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो बूंद बूंद जो है वो अनमोल है हमारे

के लिए और पूरे संसार के लिए। तो आइए साथियों, अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत रमा शर्मा के मधुर स्वर में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अल्प विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ग्राम्यालोक में। किसान भाइयों, खेती किसानी तो आप करते ही हैं, लेकिन आज के दौर में खेती के साथ साथ कुछ व्यवसाय करके भी आप आर्थिक लाभ पा सकते हैं। जैसे कि दुग्ध उत्पादन करके आप डेयरी उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ बकरी पालन भी एक अच्छा व्यवसाय है, बहुत ही कम लागत का और लाभकारी व्यवसाय है बकरी पालन। यदि वैज्ञानिक तरीके से सही नस्ल के चुनाव और उचित टीकाकरण के साथ इस व्यवसाय की शुरुआत की जाए तो ये कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनुपम कृष्ण दीक्षित को, जिनसे बातचीत कर रहे हैं देवेंद्र सिंह और विषय है बकरी पालन प्रबंधन।
2: किसान साथियों नमस्कार, आज हम मथुरा फरह मखदूम में स्थित बकरी अनुसंधान केंद्र पर मौजूद हैं और आप तो जानते ही हैं जो बकरी पालन है उसको किसानों की कामधेनु कहा जाने लगा है और बहुत से हमारे जो किसान भाई हैं वो बकरी पालन की ओर रुझान कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन गया है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने के लिए हमारे बीच केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अनुपम कृष्ण दीक्षित जी वो मौजूद हैं और हम आज उनसे बकरी पालन को लेकर और तमाम तरह की बातों को जानेंगे कि कैसे हमें बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: सर। सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि हम लोग किसान भाई जो बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं या कहें कि हम लोग जो करना चाहते हैं शुरुआत और जो पारंपरिक रूप से हम लोग करते आ रहे हैं, तो अब हमें किन बदलाव की जरूरत है, हमें बकरी पालन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए नए सिरे से अगर बात की जाए तो।
3: सबसे पहले सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को हमारा संस्थान का 47वां स्थापना दिवस समारोह और द्वितीय राष्ट्रीय बकरी दिवस को हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं
2: जी।
3: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की जो मखदूम फरह मथुरा में उपस्थित है, इसका स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1989 को इस उद्देश्य के साथ में की गई कि अपने देश के जो करोड़ों की संख्या में बकरी पालक हैं उनको किस तरीके से वैज्ञानिक विधियों द्वारा कैसे हम उनके जो बकरी पालन का जो माध्यम है या बकरी पालन का तरीका है उसमें कैसे वैज्ञानिक विधियों को समावेश करते हुए उनकी आय को बढ़ाएं
2: जी।
3: मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और आज यहाँ पर इसका मान बढ़ाया। जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ संस्थान जो है वो बकरी पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग मिलके यहाँ पर बकरियों का नस्ल प्रबंधन, बकरियों का पोषण प्रबंधन, बकरियों का आवास हम किस तरीके से बनाएं जिसमें कि बकरियां अच्छी तरीके से रह पाएं, और इन सबके साथ साथ जो बकरी का जो सबसे मुख्य चीज है वो है उसका स्वास्थ्य प्रबंधन और बकरियों का आर्थिक लेखा जोखा के रखने के साथ साथ किस तरीके से बकरियों का विपणन किया जाए जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ। तो वैसे तो बकरी पालन हमारे देश में वर्षों से होता आ रहा है
2: जी।
3: लेकिन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम थोड़ी बहुत भी वैज्ञानिक जो विधियां हैं जो वैज्ञानिकों ने खोज की है या जो तकनीकी हैं उनको अपने बकरी पालन में अपना लेते हैं तो बकरी पालन में होने वाली जो नुकसान है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे पीपीआर बीमारी है, ईटी बीमारी है, एफएमडी बीमारी है, इनसे बकरियों के जो है आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो जाता है और इन सब नुकसानों को हम लोग काफी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि एकदम आप पूरा उसको खत्म कर देंगे लेकिन काफी हद तक हम इसको कम कर सकते हैं और कम करने के साथ साथ जो हमारा नुकसान होगा वो हमारा जो है लाभ में परिवर्तित हो जाएगा जिससे

0: कि किसानों को बकरियों से होने वाली प्रति माह या वार्षिक आय को हम लोग बढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा सर, स्वास्थ्य को लेकर आपने बताया, तो वैक्सीनेशन के लिए, वैसे भी बकरी को कागज की नाव कहा जाता है, आप तो जानते ही हैं, तो वैक्सीनेशन को लेकर हम लोगों को कितना जागरूक रहने की जरूरत है, और ये वैक्सीनेशन क्या सरकार द्वारा फ्री में होते हैं या फिर हम लोगों को अब स्वतः जाकर इसको करवाना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, या आपके अनुसंधान से हम लोग जो बकरियां लेंगे तो उनमें वैक्सीनेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे खरीदें, शुरुआत हम लोग कैसे करें बकरी पालन की, अगर जो हमारे नए किसान भाई करना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए।
0: मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, जैसे आपने पूछा है कि शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत में देखिए कोई भी कार्य हो, चाहे वो बकरी पालन हो या अन्य कोई कार्य हो, उसकी शुरुआत करने से पहले हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो मैं सब किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि बकरी पालन शुरू करने से पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है संस्थान द्वारा, उसको जरूर पूरा करें।
1: तो प्रशिक्षण लेने के लिए आपके यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कैसे जानकारी होगी लोगों को?
0: देखिए, प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो वर्ष में लगभग 10 से 12 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लगभग अगर हम जोड़ें तो प्रति माह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीधा सा एक ये है तरीका कि आप जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का हेल्पलाइन नंबर है 0565-2970-999,
1: सर एक बार पुनः दोहरा दीजिए,
0: 0565-2970-999 2970-999 और 0565 मथुरा का कोड है
1: जी।
0: तो ये किसान एकल खिड़की का नंबर है, और इस माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम कब आयोजित हो रहा है, और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको वहाँ से मिल सकती है। साथ ही साथ जो हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का जो हमारी वेबसाइट है www.cirg.res.in, इस पर भी जाकर आप जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो किसान भाई हैं जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो हमारे जो CIRG की वेबसाइट पर एक हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, उसको भर दें, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। आपका नंबर जब आएगा, यहाँ पर हम लोग जो है चयनित किसानों की लिस्ट को डाल देते हैं लगभग 15 से 20 दिन पहले ट्रेनिंग के डेट के पहले
1: जी,
0: और
1: जी।
0: उसके बाद चयनित जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, जो बकरी पालक हैं, वो हमारे संस्थान में आ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम लोग यहाँ आयोजित करते हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें 14 से 17 राज्यों से लोग आते हैं।
1: अच्छा अच्छा, और इसके लिए कोई शुल्क देना पड़ता है सर?
0: जी हाँ, इसका जो है 7,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, और लगभग 325 रुपया इसका रहने खाने का खर्चा आता है एक किसान का दिन का
1: जी जी।
0: तो ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, सोमवार से प्रारंभ होकर ये शनिवार को संपन्न होता है, तो इसके माध्यम से भी आप वहाँ पर किसान भाई जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि बकरी का स्वास्थ्य प्रबंधन है, टीकाकरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी का जब हम लोग साइंटिफिक प्रबंधन की बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करते हैं, तो बकरी की नस्ल कौन सी रखी जाए पहला प्रश्न मन में आता है। जमुनापारी रखें, बरबरी रखें, जखराना रखें कि सिरोही रखें, कौन सी रखें? ये बकरियां जो हैं, आपको जानकारी हर्ष होगा कि लगभग हमारे देश में 15 करोड़ बकरियां हैं और उनकी लगभग 43 नस्लें हैं, और 43 नस्लें जो हैं अलग अलग प्रदेशों में बटी हुई हैं या उनका वहां पर वितरण है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की हमारी 3 मुख्य नस्लें हैं, जिसमें की बरबरी है, जमुनापारी है, और इसके अलावा जो है हमारी एक और नस्ल है जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंडी। तो ये जो है 3 नस्लें मुख्य हैं, एक रोहिलखंडी नस्ल भी है, लेकिन वो जो नस्ल जो है वो पाई जाती है इधर आपका बरेली बदायूं उस साइड में।
1: अच्छा सर, 43 टाइप की नस्लें हमारे प्रदेश में पाई जाती है या देश में, हमारे यहाँ की जो जलवायु है उसको ध्यान में रखते हुए किस नस्ल की बकरियां हमारे यहाँ पे ज्यादा कारगर रहे?
0: जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जैसे मैंने बताया कि 3 नस्लें हैं, तो जमुनापारी, बरबरी और बुंदेलखंडी। तो अभी मैं बात करूंगा आपको कि जैसे मथुरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, ये जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र में आप बरबरी को संस्कृत की जाती है, क्योंकि बरबरी का गृह जनपद है, ये बरबरी का गृह क्षेत्र है
1: जी।
0: इसके अलावा जब हम थोड़ा सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़े तो उधर चलेंगे तो आप इटावा, फिर आपका और आगे चलेंगे तो औरैया, और इटावा में जालौन, जालौन जो है वो जिला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये 3-4 जो जिले हैं, मैं कहूंगा कि जो यमुना की रेवाइंस है, जो चंबल के जो बीड़ क्षेत्र है, इनमें जो है बकरी पाई जाती है वो जमुनापारी है, और जमुनापारी बहुत ही खूबसूरत बकरी है, दूध के लिए बहुत प्रचलित है, और इसके जो बकरे जो है उनकी कीमत आप समझिए लाखों रुपए में जाती है। इसके अलावा जो हमारे 7 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं, जिसमें बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, झांसी, फिर आपका चित्रकूट है, फिर ये आपका ललितपुर है, ये सब जो 6-7 जिले हैं, इन जिलों में जो बकरी पाई जाती है वो है आपकी बुंदेलखंडी। तो बुंदेलखंडी बकरी बहुत अच्छी है, वहां पर चराई की व्यवस्था भी है, तो उसमें भी वो बकरी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है।
1: लेकिन सर, हमारे कहने का मतलब ये, जो हमारे आसपास क्षेत्र के जिले हैं उन वहां पे बरबरी सबसे उपयुक्त बकरी की नस्ल मानी जाएगी, आपका कहने का मतलब सीधा ही है?
0: जी हाँ, देखिए बरबरी जो है ये नस्ल बहुत

0: अच्छी है, खासतौर से जो व्यावसायिक बकरी पालन की अगर आप बात करें तो उसमें ये बकरी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये कम समय में ज्यादा बच्चे देती है,
1: जी जी
0: दूध भी इसके नीचे है, ज्यादा बच्चों की संख्या होती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन तेजी से होता है और इसका बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है।
1: अच्छा सर, चलिए नस्ल की बात हो गई, अब आती है आहार प्रबंधन की। बकरियों के आहार प्रबंधन को हम लोग कैसे सस्ता बनाएं, या कहें कि कैसा आहार प्रबंधन दें जिससे इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो?
0: देखिए, बकरियों का आहार प्रबंधन बहुत ही मुख्य अवयव है। बकरी पालन हम लोग करते हैं, व्यावसायिक बकरी पालन, तो उसमें समझ लीजिए कि जो हमारी रिकरिंग कॉस्ट होती है, जिसको हम लोग चल लागत कहते हैं, उसका लगभग 50-60% जो है वो केवल आहार पर खर्चा करता है किसान।
1: जी
0: तो इस आहार को अगर हम अपने क्षेत्रीय जो हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, यानी कि क्षेत्र की उपलब्धता के हिसाब से अगर हम उसका चारा दाना तैयार करते हैं
1: जी
0: और उसी तरह के हम वृक्षारोपण करते हैं जिनको बकरी खाती है,
1: बकरी खाती
0: इसके साथ साथ जो हमारे पास दालों के जो भूसे बच जाते हैं जिनका हम उपयोग इधर उधर नहीं करते, बकरी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनमें प्रोटीन कंटेंट होता है, और जो दाना जो हमारे पास उपलब्ध है उनको प्रयोग करते हुए अगर हम अपना चारा दाना स्वयं घर पर बना लेते हैं तो उससे भी हमारी कॉस्ट काफी कम हो जाती है।
1: अच्छा।
0: और अगर आपके पास चराने की व्यवस्था है तो इसको हम लोग जो है अर्धसघन पद्धति में, इसमें 3 से 4 घंटे उसकी चराई भी होगी और साथ में हम 150 से 200 ग्राम उसको दाना अगर देते रहे तो भी हमारा जो है बकरी पालन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है।
1: अच्छा सर, बकरियों में सबसे मुख्यतः बीमारियां कौन कौन सी ज्यादा पनपती हैं? अगर बात की जाए, बीमारियां किस मौसम में अधिक पनपती हैं?
0: बकरी पालन में जो समस्या आ रही किसान भाइयों को वो आती है, जैसे मान लीजिए पीपीआर बीमारी है। पीपीआर बीमारी जो है ये इसको बकरी का प्लेग भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब एक बार बकरी में थोड़ा बीमारी आना शुरू हो जाती है या आ जाती है तो उसमें बड़ी संख्या में मृत्यु दर होती है बकरियों में, जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होता है।
1: एक आप डाल के आइए, दूसरी मर जाएगी, दूसरी, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी
0: बहुत जल्दी जल्दी बकरियों में मृत्यु दर हो जाती है। पहचान इसकी जो है वो ये है कि इसमें नाक में से, आंख में से काढ़ा पानी आना, मुंह में छाले पड़ जाना और उसके बाद पतले दस्त लग जाना। तो ये जब चीजें होने लगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को ये एक बार बीमारी आ जाती है तो बड़े नुकसान करके जाती है। इसलिए मेरा एक उनसे ये निवेदन है कि जो आपके समीप जो पशु चिकित्सा केंद्र हैं उनसे संपर्क करें, उनके डॉक्टरों से मिलें, और पीपीआर का टीका बकरी को लगभग 3 माह की उम्र से लगना शुरू हो जाता है उस पे लगा दीजिए, और जो बड़ी बकरियां हैं उनमें लगा दीजिए। फिर जो है ये बीमारी 2.5 से 3 साल के पहले नहीं आ सकती है, अगर बकरियों में सभी में टीकाकरण है। इसकी जो खर्चा है बहुत कम है, 3 से 3.5 रुपए एक टीके का खर्चा आता है, और उसमें अगर आपकी मान लीजिए बकरी बच जाती है 10-12 हजार रुपए की तो आप समझ लीजिए कितना लाभ किसान को हो सकता है। दूसरा टीका है ईटी का, इसको कहते हैं एंट्रोक्सेमिया, जो कि पेट के आंत्र विषाक्त रोग है बकरियों का। अचानक जो खान पान चेंज हो जाता है, ज्यादा मात्रा में गेहूं खा लें या फसल के खेत में घुस जाए, तफारा टाइप का हो जाता है, उसके लिए भी टीका है और उसकी बूस्टर डोज भी है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने बकरियों के लिए स्वास्थ्य चक्र बनाया हुआ है, उस स्वास्थ्य चक्र में कब टीका कौन सा लगेगा, कितनी मात्रा में लगेगा, किस उम्र पे लगा हुआ है वो बताया गया है, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर ये जानकारी फ्री में उपलब्ध है। किसान भाई उसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, किसी तरह की कोई समस्या आती है तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से संपर्क स्थापित।
1: सर, आपने हमारे सुनने वाले को, हमारे किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार जानकारियां दी, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी बकरी पालन प्रबंधन, डॉक्टर अनुपम कृष्ण दीक्षित से भेंट कर रहे थे देवेंद्र सिंह। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप इस उपयोगी जानकारी का अवश्य लाभ लेंगे।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: और साथियों, आपको एक जानकारी दे दें कि आप घर में आसानी से करौंदा लगा करके सालों तक पौष्टिक फसल पा सकते हैं। करौंदा विटामिन सी, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पौष्टिक फल है। इसके फल अचार, चटनी, जूस और जैम बनाने में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अच्छी बात यह है कि करौंदे का पौधा कम देखभाल में भी आसानी से बढ़ता है और घर की छत, बालकनी या बगीचे में लगाया जा सकता है। जून से सितंबर का समय करौंदा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसे बीज या कलम से लगा सकते हैं। बीज से पौधा तैयार करने के लिए पके फल से बीज निकाल करके उसको 24 घंटे पानी में भिगोना होता है। और साथियों, अब समय है आपको मंडी भाव की जानकारी देने का। चावल 3,300 रुपए से 3,480 रुपए प्रति क्विंटल।

अरहर दाल 9,800 रुपये से 10,100 रुपये प्रति कुंतल, चना दाल 7,350 रुपये से 7,600 रुपये प्रति कुंतल, उड़द दाल 9,700 रुपये से 9,950 रुपये प्रति कुंतल, मूंग दाल 8,950 रुपये से 9,050 रुपये प्रति कुंतल, मसूर दाल 9,150 रुपये से 9,350 रुपये प्रति कुंतल और सरसों 6,800 रुपये से 6,950 रुपये प्रति कुंतल। और अब आपको मौसम की जानकारी दे दें। अधिकतर आसमान साफ रहा, धूप खिली रही, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और साथियों फिर से चलते हैं लोकगीतों की ओर और समवेत स्वर में सुनते हैं ये कर्णप्रिय लोकगीत।

और साथियों, इस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अनुमति दीजिए आप सभी को मुक्ता सिकरवार की राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपके रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं आज की खास चर्चा पर। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव होती है जब वहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान प्राप्त हो। क्योंकि साथियों, जब महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, व्यापार, खेल और सामाजिक विकास में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देती हैं, तब राष्ट्र और ज़्यादा तेजी से समृद्ध, सशक्त और विकसित बनता है। क्योंकि आज विश्व स्तर पर महिलाओं ने ये सिद्ध करके भी दिखाया है। आज अनेकों देशों में महिलाएं वैज्ञानिक, न्यायाधीश, सैनिक, अंतरिक्ष यात्री, उद्योगपति और सामाजिक नेता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिसमें भारत की महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। भारत की महिलाएं भी विश्व भर में अपनी कामयाबी का परचम लहरा चुकी हैं और लहरा रही हैं, जिसमें कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, किरण वेदी जैसी अनेक महिलाओं ने अपने कार्यों से देश का गौरव बढ़ाया है और इनकी उपलब्धियों ने नई पीढ़ी को एक प्रेरणा भी दी है कि मेहनत और आत्मविश्वास से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। साथ ही एक समय था जब महिलाओं की भूमिका केवल घर तक सीमित थी, उनको घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन समय के साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन आया और आज महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। आज महिलाएं स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी नेतृत्व कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं। हालांकि साथियों, आज भी महिलाओं के सामने चुनौतियाँ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं। आज भी कई स्थानों पर महिलाओं को लैंगिक भेदभाव, असमान अवसर, असमान वेतन, हिंसा और सामाजिक रूढ़ियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं और इस मुहिम में तो अब सरकार भी महिलाओं के साथ खड़ी रहती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार भी लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने, कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। साथ ही स्थानीय निकायों और विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। साथियों, सरकार ने इन प्रयासों का उद्देश्य केवल महिलाओं का विकास नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षित वातावरण मिल सके। और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम सब मिलकर महिलाओं का सम्मान करें, उनको शिक्षा में बढ़ावा दें और असमानता की भावना को त्याग कर समानता की भावना को अपनाते हुए उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर दें। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ अब पूछ लेते हैं आपसे आज का प्रश्न। साथियों, आज का हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के मध्य में देंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये मधुर गीत।

0: जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

0: साथियों, आज के ज्ञान सागर में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माँ ज्वाला देवी मंदिर की, जहाँ हमें आस्था और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हाँ साथियों, यहाँ माँ ज्वाला देवी का मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ माता के दर्शन मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि सदैव प्रज्वलित रहने वाली दिव्य ज्योतियों के रूप में होते हैं, और इसी मंदिर की यह सबसे बड़ी विशेषता भी है। मंदिर के गर्भगृह में चट्टानों की दरारों से प्राकृतिक रूप से अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं, जो कि सदियों से बिना रुके जल रही हैं, और इन्हें माँ की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु इन्हीं ज्योतियों की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएँ माँ के चरणों में अर्पित भी करते हैं। साथियों, यहाँ पर परंपरा के अनुसार 9 पवित्र ज्योतियाँ पूजी जाती हैं, जिन्हें माँ के विभिन्न स्वरूपों जिनमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजना देवी से जोड़ा जाता है, और प्रत्येक ज्योति का अपना एक आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के टुकड़े किए थे, तब यहाँ उनकी जीवा यानी कि जीव गिरी थी, और वही स्थान आज माँ ज्वाला देवी शक्तिपीठ के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक का मानना है कि इस मंदिर में सदियों से जो ज्योति जल रही है वो किसी प्राकृतिक गैस का कारण हो सकती है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि माँ की असीम कृपा और चमत्कार का प्रतीक है। हर वर्ष चैत और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने भी आते हैं, और तब पूरा वातावरण यहाँ का जय माता दी के जय घोष, भजन कीर्तन और श्रद्धा से गूंज उठता है। और उन दिनों में मंदिर की भव्य सजावट, विशेष आरती और धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालुओं के मन को अत्यंत आनंद और शांति प्रदान करते हैं। साथी, ज्वाला देवी मंदिर एक धार्मिक स्थल के साथ साथ ये भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ हर जाति वर्ग और हर प्रदेश के लोग बिना किसी भेदभाव के माता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, और यही विविधता में एकता भारत की सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ अब हम बता देते हैं आपको आज के प्रश्न का जवाब। साथियों, आज का हमारा प्रश्न था कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, जिसका जवाब है मीरा कुमार, जिन्होंने 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और इस ऐतिहासिक पद पर आसीन होने वाली पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हुई। तो साथियों, बातचीत आगे और भी होगी, फिलहाल लेते हैं एक विराम।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, कार्यक्रम में अब तक आपने सुना चर्चा, ज्ञान सागर और गीत संगीत, और अब बारी है कहानी की, जिसका नाम है 1 और 11, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रमेश चंद और स्वर हैं श्री कृष्ण की। तो आइए कहानी।
2: किसी शहर में प्रिंस दयाल रहते थे। वो एक स्कूल में शिक्षक थे, परंतु उनकी तो विशेष इच्छा थी कि वो सैन्य सेवा में पहुंचकर देश की सेवा करें, लेकिन किस्मत ने ऐसा किया कि वो शिक्षक बनकर ही रह गए। वैसे तो शिक्षक बनना एक बहुत गर्व का कार्य है, बड़ा कार्य है, आप एक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं सेना में सेवा न कर सका तो क्या, अपने पुत्र को जरूर मैं इस क्षेत्र में भेजूंगा, मैं उसे सैनिक स्कूल में शिक्षा दिलाकर देश सेवा के लिए तैयार कराऊंगा। प्रिंस दयाल ने ये बात अपने मित्र देवधर को भी बताई तो देवधर ने कहा, चलो अच्छा है, मैं भी अपने पुत्र का एडमिशन आपके बेटे के साथ ही सैनिक स्कूल में करा देता हूं। दोनों साथ साथ स्कूल चले जाया करेंगे। दोनों ने ही अपने अपने बेटों का एडमिशन सैनिक स्कूल में करा दिया। अभी तक तो केवल पिता ही मित्र थे, अब उनके दोनों पुत्र जॉन और मयंक भी मित्र बन गए। धीरे धीरे समय बीता गया, बच्चे बड़े हुए, अब दोनों ही हाई स्कूल पास करके इंटर में आ गए थे। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों ही परिवार अक्सर हर साल किसी न किसी स्थल को देखने जाया करते थे। इस बार भी दोनों परिवारों ने नैनीताल जाने का प्रोग्राम बना लिया, ताकि सब लोग मिलकर वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। नैना देवी के दर्शन करके नौका विहार का भी आनंद लिया गया। कुछ दिन नैनीताल में बिताने के बाद सभी ने अपने अपने घर को प्रस्थान किया। ट्रेन अपने समय से चल रही थी, अचानक मुरादाबाद के पास ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और चीख पुकार मच गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ दिवंगत हो गए। इस एक्सीडेंट में जॉन ने अपने दोनों पैर और मयंक ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। इस हादसे के बाद दोनों की पढ़ाई छूट गई। सैनिक स्कूल में पढ़ने के कारण उनमें देशभक्ति का जज्बा विद्यमान था, मगर दोनों अपनी अपंगता के कारण देश की सेवा करने में असमर्थ थे। एक दिन जब वे घर के बाहर घूम रहे थे, तब उसी रास्ते से उनके शिक्षक आनंद कुमार अपने स्कूल जा रहे थे। जॉन और मयंक को देखकर वे रुक गए और उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। दोनों ने अश्रुपूरित नयनों से उन्हें अपनी करुण कहानी सुनाई। उनकी करुण कथा सुनकर आनंद मास्टर जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने दोनों को धीरज देते हुए कहा कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आप दोनों की जान बख्श दी और केवल आपको कुछ अंगों से हाथ धोना पड़ा। अपंगता एक दुर्घटना है, कोई श्राप नहीं है। अभी अगर आप दोनों मिल जाओ तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। कुछ समय पश्चात दोनों अपने गांव घूमने आए। गांव में भी दोनों के घर पड़ोस में ही थे और संयोग से उनका गांव बॉर्डर के पास ही था। एक दिन जॉन ने देखा कि एक घायल सैनिक जल्दी जल्दी घिसटते घिसटते अपनी सरहद में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तभी उसके पास एक दूरबीन और कुछ गोले सरहद के उस पार से आकर गिर पड़े। गनीमत थी कि गोले फटे नहीं थे। जॉन ने उन गोलों को उठा लिया और उस दूरबीन से जॉन ने देखा कि सरहद के उस पार पहाड़ी पर एक टेंट लगा हुआ है, जहां एक हवलदार कुछ पेटियां उतार रहा है और कुछ सैनिक उन पेटियों में से कुछ सामान निकाल कर ले जा रहे हैं। शायद वे हथियार ही हो सकते हैं। तब जॉन ने मयंक से कहा कि अपने देश की रक्षा के लिए हमें उस टेंट को, जो शायद उनकी चौकी है, नष्ट कर देना चाहिए। फिर दोनों कुछ देर तक सोचने लगते हैं कि हम तो अपंग हैं, हम कैसे उस टेंट को नष्ट कर सकते हैं। तभी मयंक को गुरु जी की बात याद आ गई और उसने जॉन से कहा कि तुम्हें याद है ना कि गुरु जी ने क्या कहा था, हम दोनों मिल जाएं तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। देखो, तुम्हारे पास हाथ हैं और मेरे पास पैर, तुम मेरे कंधे पर बैठकर अपने हाथों से दुश्मन की चौकी पर गोले फेंककर उसे नष्ट कर देना। इस प्रकार हम दोनों अपने देश की सेवा कर सकते हैं। मयंक ने जॉन से कहा, यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो।

0: टेंट के पास भी सेना का पहरा होगा। इस कार में हम दोनों की जान भी जा सकती है। ठीक है, सुनो, हम दोनों भिखारी का वेश धरकर कुछ गोलों को अपनी झोली में और कुछ गोले अपने कमरे बांधकर दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे ये गाते हुए चौकी तक पहुंचेंगे। हमारी वेशभूषा और अपंगता को देखकर कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। हम दोनों चौकी पर पहुंचकर उस पर गोले फेंककर अपने मिशन को अंजाम दे देंगे। फिर क्या था, दोनों ने भिखारी का वेश धरा, मयंक ने जॉन को अपने कंधे पर बैठाया और भीख मांगते हुए सरहद पार करके दुश्मन की चौकी तक पहुंच गए धीमे धीमे दुश्मन की चौकी तक पहुंच गए। वहां जाकर गाना शुरू किया, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। चौकी पर गश्त देते हुए जब सैनिकों ने यह गाना गाते हुए दोनों को देखा तो कहने लगे, या अल्लाह, अजब है तेरी कारीगरी। एक छोकरे को पैर दिए हैं पर हाथ नहीं, और दूसरे को हाथ दिए हैं पर पैर नहीं। दोनों किस तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। सैनिकों को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें पास बुलाया और कहा, इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? यहां तुम्हें क्या मिलेगा? गांव में जाओ और वहां तुम्हें खाना पीना दोनों मिल जाएंगे। दोनों ने एक स्वर में कहा, हुजूर, हम रास्ता भटक गए हैं और इधर से उधर भूखे प्यासे भटक रहे हैं। आप हमें गांव का रास्ता बता दीजिए और हम भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए, अल्लाह आपका भला करेगा। तब सैनिक ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहा, जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। जैसे ही सैनिक उनके लिए खाना लेने टेंट में घुसा, तभी मयंक ने जॉन को इशारा किया और जॉन ने झोली में रखे गोले टेंट पर फेंक दिए और एक दूसरे से चिपक कर पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते घबराते हुए अपने गांव के पास तक आ गए। और कुछ क्षण बाद ही आग और धुएं के गुबार से आसमान लाल और काले रंग से भर गया। दीपावली जैसी आतिशबाजी आसमान में होने लगी। देखते ही देखते दुश्मन की चौकी खाक हो गई। आग और धुएं के विशाल गुबार को बॉर्डर पर उठते देखकर बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों ने सावधानी के नाते अपने सैनिकों को तुरंत घटनास्थल की ओर भेजा, जहां बॉर्डर से कुछ पहले ही जॉन और मयंक बदहवास हालात में पड़े हुए थे। इन दोनों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या करके आए हैं। भारतीय सैनिकों ने जब उन दोनों को देखा तो उन्हें शक हुआ कि इस घटना से इन दोनों का संबंध जरूर है। उन्होंने इन दोनों से पूछताछ की और सारा विवरण जानने के बाद अपनी चौकी पर ले आए। सेना के ब्रिगेडियर ने जब यह सूचना अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई और उच्च अधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति महोदय से इन दोनों बालकों को वीरता के लिए पुरस्कृत करने की संस्तुति की। राष्ट्रपति महोदय ने 26 जनवरी के दिन शौर्य पदक से उन्हें सम्मानित करते हुए ये घोषणा की कि उन्हें वयस्क होने पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जॉन और मयंक राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए गए पदकों को अपने सीने पर लगाए फूले नहीं समा रहे थे।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कहानी एक और 11, जिसके लेखक थे डॉक्टर रमेश चंद और स्वर थे श्री कृष्ण के। और अब वक्त है आपकी सेहत से जुड़ी सेहतमंद बातों का, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आयुर्वेद में अमृत फल कहे जाने वाले आंवले के बारे में। जी हां साथियों, आंवला जो कि विटामिन सी, फाइबर, आयरन, कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है और जिसका नियमित संतुलित मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आंवले के वैसे तो सारे साथियों कई सारे लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ आपके लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। साथियों, पाचन क्रिया सुधारने के लिए आंवला बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें आप आंवले के चूर्ण में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर भोजन के बाद आधा चम्मच ले सकते हैं। वहीं बालों के लिए आंवला संजीवनी का काम करता है, जिसमें आप आंवला पाउडर को दही या नारियल तेल में मिलाकर बालों में 30 से 40 मिनट तक लगाकर रखें और फिर बालों को धो लें। ऐसा करने से आपके बाल तो स्वस्थ होंगे ही, साथ ही चमकदार, घने और मजबूत रहने में भी आपको मदद मिलेगी। वही साथियों, शरीर में ऊर्जा और सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप रोज़ एक आंवले का मुरब्बा या सूखा आंवला भी ले सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी सेहत से जुड़ी बातें और अब समय है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

अभी हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को है। समय हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार

0: चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Both houses of parliament were adjourned for the day today, following repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. In the Lok Sabha, amid the uproar, the House passed a resolution by voice vote suspending Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the remaining monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Teneti said Mr. Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. The resolution was moved by Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal. Earlier in the day, Speaker Om Birla appealed to the opposition members to allow the House to function smoothly and said the government was ready for a discussion on the need.

बच्चे को उसके भाषा भाषी समूह से अलग कर दिया जाए तो उसका मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा ही एक राष्ट्र के संदर्भ में भी है, क्योंकि राष्ट्र का जनमानस भी भाषा में प्रतिबिंबित होता है। भाषा सिर्फ संप्रेषण का एक साधन मात्र ही नहीं है, अपितु हमारे समस्त हाव भाव, आचार विचार, कार्य व्यवहार आदि सभी भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त अथवा प्रकट होते हैं। जहाँ तक राष्ट्र विकास का प्रश्न है, वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक लेख में कहा था, नई शताब्दी निश्चित रूप से एशिया की शताब्दी होगी, लेकिन हमें अपने दृढ़ संकल्प से इसे भारत की शताब्दी बनाना होगा। यह भी सुनिश्चित है कि आगामी 50 वर्षों में भारत आर्थिक रूप से संपन्न होगा। वैसे तो भौतिक दृष्टि से संपन्न अनेक देश होंगे, लेकिन भारत की विशेषता ये होगी कि वे भौतिक मूल्यों के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक आदर्श उपस्थित करेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद भारत सामाजिक क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त करेगा। सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार आदि सुविधा उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास का मार्ग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में सुनिश्चित कर दिया गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। साथ ही साथ राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास का मार्ग तय करने वाले राजभाषा आयोग के मनीषी सदस्यों को भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में बाकायदा निर्देशित कर दिया गया है कि हिंदी के विकास के संबंध में आयोग यह ध्यान रखेगा कि भारत की औद्योगिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक प्रगति में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे। इसमें कोई संशय नहीं है कि आज विश्व स्तर पर भारत ने एक अपनी विशिष्ट पहचान कायम की है। आज न केवल एक बहुत बड़े बाजार के रूप में, बल्कि अपनी विभिन्न सेवाओं, उत्पादों और विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने अपनी प्रगति का परचम लहराया है। आज कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों ने अपना लोहा मनवाया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान व अन्य विभिन्न उपग्रह भेजकर भारत विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर पोखरण में 2 बार परमाणु विस्फोट कर भारत ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अपनी परमाणु शक्ति का परिचय दिया है। इसी तरह विभिन्न दूरियों की मारक क्षमता वाली मिसाइलें बनाकर रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियां हासिल की हैं। तो वहीं तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन एवं विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में भी भारत पीछे नहीं रहा है, और अत्यंत विकसित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इन क्षेत्रों में भी भारत ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वहीं आर्थिक क्षेत्र में भी भारत पीछे नहीं रहा है। भारतीय पूंजियों ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। विभिन्न भारतीय पूंजीपति अपनी क्षमता के बल पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती दे रहे हैं, तो कई पूंजीपतियों ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण कर भारत का नाम उन्नत किया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, स्वामी रामदेव आदि मनीषियों द्वारा योग आध्यात्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यक्रमों से भारत का नाम रोशन हुआ है। राजनीतिक रूप से भी भारतीय मूल के हमारे भाइयों ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मॉरिशस, सूरीनाम, नेपाल आदि देशों में महत्वपूर्ण राजनीतिक पद प्राप्त कर भारत की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाए हैं। खेलों के क्षेत्र में भी क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन आदि क्षेत्रों में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी, दूर संचार क्षेत्र में भारत का योगदान कम नहीं है। उपलब्धियां गिनाने की बात की जाए तो उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है। भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, लेकिन इस सब के बावजूद विचारणीय प्रश्न यह है कि हमारी इस सब प्रगति में हिंदी का क्या योगदान रहा है, अथवा मूल्यांकन की दृष्टि से क्या भारत के इस विकास को संतोषजनक करार दिया जा सकता है। उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में हिंदी के योगदान का मूल्यांकन हमें दो चश्मों से करना होगा, एक तो राजभाषा के रूप में हिंदी का मूल्यांकन तथा दूसरा हिंदी भाषा के रूप में उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में हिंदी का योगदान। निसंदेह राजभाषा के रूप में भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी प्रचलन में आई है, और लगभग 50 वर्षों की अवधि में
राजभाषा।

0: हिंदी ने 0 से लेकर 70, 80 अथवा 90% तक का सफर तय किया है। किंतु हम जिन वैज्ञानिक औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति की बात करते हैं, निश्चित रूप से हमें इन क्षेत्रों में हिंदी का मूल रूप से प्रयोग सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि वैज्ञानिक औद्योगिक क्षेत्रों में हिंदी भाषा में शोध एवं साहित्य सृजन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। सांस्कृतिक रूप से फिल्मों, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के माध्यम से हिंदी के प्रचार एवं प्रसार से बहुत अधिक प्रगति परिलक्षित हुई है, और इन माध्यमों से हिंदी का प्रयोग और अधिक बढ़ाए जाने पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। यदि मूल रूप से हिंदी में शोध कार्य एवं साहित्य सृजन हो, तो हमारी सभी क्षेत्रों में चहुमुखी एवं बहुमुखी प्रगति होगी।
1: अभी आपने अशोक कुमार सक्सेना से जाना कि राष्ट्र के विकास में हिंदी की क्या भूमिका है, और कार्यक्रम था विविधा।

अभी मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व, ग्लासगो में कल होगा आयोजन का।

0: शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्री मणिरामदास छावनी में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
0: ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। बैठक में चढ़ावा गणना व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विद्यार्थियों की आकांक्षाएं पूरी करने और युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी।
0: रक्षा मंत्री ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार ने प्रत्येक मुद्दे पर सार्थक बहस करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतरकर मुद्दों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कल नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है।
3: जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इसे नाले चोक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय

0: जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया के अंदर एकमात्र एक राजनीतिक दल के रूप में, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करते हुए सुशासन लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी एक मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सही सोच और राष्ट्रहित की भावना विकसित करना भी है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का आज बागपत के बड़ौत में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। श्री अरुण ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री धनखड़ का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मिला था। ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का कल से शुभारंभ होगा। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 10 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए दो आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। वहीं कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतमबुद्ध नगर में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 18 बाढ़ चौकियां और 18 बाढ़ शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन की टीमें सतर्क हैं और जल भराव वाले इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है 7:31। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश और मैं हूं आज की शाम का होस्ट और मेजबान अली। वो कार्यक्रम जहां हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे रानी गाडगिल की, जो एक अद्भुत स्वतंत्रता सेनानी थी। दोस्तों रानी गाडगिल का जन्म 23 जनवरी 1896 को नागालैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम रानी गाडगिल ही था, लेकिन उन्हें गाडगिल रानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष की और हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। रानी गाडगिल की शिक्षा बहुत साधारण थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। रानी ने युवा उम्र में ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने विचारों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया था।

दोस्तों, 1915 में जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, रानी गाइडिल ने अपने गांव के लोगों को संगठित किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। रानी ने न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। 1920 में रानी गाइडिल ने असहमति के प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी के असहमति आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने अपने लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। रानी ने अपने गांव में कुटीर उद्योग स्थापित करने का भी प्रयास किया, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन रानी का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। 1932 में उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कई महीने जेल में बिताने पड़े, लेकिन रानी ने कभी भी अपने विचारों को नहीं बदला। उन्होंने अपने समय का उपयोग लिखने और अपने विचारों को स्पष्ट करने में बिताया।

दोस्तों रानी गाइडिल की वीरता ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना दिया। उन्होंने हमेशा अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा। उनके संघर्षों ने उन्हें एक मिथक बना दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रानी गाइडिल ने समाज सेवा की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने समझा कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक

स्वतंत्रता नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है। रानी गाइडेल ने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य दिया, अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। 1972 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका योगदान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आज हमने रानी गाइडल के जीवन और संघर्ष के बारे में जाना। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में कई गुमनाम नायक हुए हैं जिनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें उनकी कहानियों को जीवित रखना चाहिए और उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाना चाहिए।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजना चाहते हैं। आइए अब सुनते हैं संसद समीक्षा।

अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने दो बार स्थगन के बाद

सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।

बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क)

भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर

0: चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आपने सुनी संसद में हुई कार्यवाही पर संसद समीक्षा। 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। और आज हम बात करेंगे सदाबहार पार्श्व गायक किशोर कुमार की। दोस्तों, आज के इस विशेष रेडियो कार्यक्रम एक और अनेक में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे चमत्कारी कलाकार की जिनकी आवाज ने दिलों को छुआ, हंसी ने सबको गुदगुदाया और जीवन ने एक अनोखी मिसाल कायम की। जी हां, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की, उस जादूगर की जो गायक, अभिनेता और निर्देशक सब कुछ थे।

दोस्तों, किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। उनके पिता गणेंद्र नाथ गांगुली एक वन अधिकारी थे, जबकि मां गौरी देवी गायिका थी। घर में संगीत का माहौल था। बड़े भाई अशोक कुमार और बहन सुधीमा ने फिल्मों में कदम रखा तो छोटे भाई अनूप कुमार भी बाद में जुड़ गए। बचपन से ही किशोर संगीत के दीवाने थे। रेडियो सुनकर गाने कॉपी करते, घर के मेहमानों को मनोरंजन कर के नाम पर गाकर इनाम मांगते। बाथरूम में गाते हुए उनकी प्रतिभा साहिर देव वर्मन तक पहुंची। जब साहिर अशोक कुमार के घर आए, किशोर ने कभी औपचारिक संगीत शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनकी स्वाभाविक यारी ने उन्हें अनोखा बना दिया। 1940 के दशक में किशोर मुंबई आ गए। बड़े भाई अशोक के सहयोग से फिल्मों में एंट्री हुई। पहली फिल्म शबाब में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन गायकी का असली मौका 1948 की जिद्दी में देवानंद के लिए मिला। शुरुआत कठिन थी। कैंटीन का उधार चुकाने को 5 रुपया बाराना गाकर टालते। फिर आई कई फिल्में जैसे फागुन, लड़की, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग चमकी, लेकिन असली उड़ान 1950 के दशक में एस डी वर्मन के साथ लगी। गाइड, ज्वेल थीव जैसी फिल्मों में

0: चंदा ने किशोर की यारी को पहचाना। किशोर का स्टाइल तलत महमूद, मुकेश, रफी से अलग था, बिंदास, विद्रोही। 1969 की आराधना ने किशोर को बादशाह बना दिया। एस डी वर्मन के संगीत में मेरे सपनों की रानी और रूपते रमस्ताना ने धूम मचा दी। आर डी वर्मन, आशा भोसले और किशोर कुमार की जोड़ी ने एक अलग ही रंग सुनने वालों के सामने पेश किया।
1: अरे अरे ए,

दोस्तों किशोर दा ने 16,000 से ज़्यादा गाने गाए, 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। किशोर की आवाज़ में दर्द, खुशी, शरारत सब था। वो बाथरूम सिंगर से लेजेंड बने। दूसरी भाषाओं यानी तमिल, गुजराती, बंगला तक में उन्होंने कई गाने गाए। लेकिन 1960 के बीच में हुआ एस डी वर्मन से झगड़ा, उन्होंने गायकी छोड़ दी। फिर आराधना फिल्म ने उन्हें वापसी दिलाई। किशोर दा अकेले नहीं चमके बल्कि साथी गायकों के साथ डेट गानों ने संगीत को नई ऊंचाई दी। आशा भोसले के साथ पिया तू अब तो आजा, चांदनी रातें, ये गीत आज भी लुभाते हैं। साथ ही उनका ये गीत भी अलग ही अंदाज बयां करता है, जिसमें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर के साथ किशोर ने सुर मिलाए।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक और अनेक, और आज हमने बात की हिंदी फिल्मों के मशहूर और मारूफ गायक कलाकार किशोर कुमार के बारे में। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

ये गीत हमने लिया था फिल्म जो जीता वही सिकंदर से, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने और आवाजें थी उदित नारायण और साधना सरगम की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा पर चित्रपट संगीत। अगली प्रस्तुति फिल्म खिलाड़ी से है, जिसके रचनाकार हैं अनवर सागर, संगीत जतिन ललित ने दिया है और आवाज दी है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लता मंगेशकर और उदित नारायण के आवाज से सजे इस गीत को हमने फिल्म मोहब्बतें से लिया है। संगीतकार हैं जतिन ललित और गीत आनंद बख्शी का है।

अभी आपने सुना चित्रपट संगीत मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण

0: रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने

0: अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएचपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएचपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित

0: तो माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles.

0: Fishermen not to venture into the sea until 24th July due to rough conditions. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
1: The Indian Meteorological Department has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Gujarat and central Maharashtra tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Jharkhand, Karnataka, Odisha and Rajasthan. President Draupadi Murmu today unveiled a bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje in North Macedonia. Addressing the gathering, the president said Mahatma Gandhi's ideals of dialogue, compassion and peaceful coexistence remain highly relevant in a world facing conflict, intolerance and division. The United States has condemned Iran-backed and Yemen-based armed group Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that the situation would be de-escalated. Mr. Rubio said anything that restricts shipping through the Red Sea would be problematic for the same reasons that the Strait of Hormuz is problematic. Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid the ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. In China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty entered singles pre-quarterfinals at Changshuo today. Two-time Olympic medalist Sindhu advanced to the second round of women's singles after defeating compatriot Unnati Huda in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police and pleas alleging use of excessive force on protesters. And in China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं असगर अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें। हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है। इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की। इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरखास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बेहतर रेल सेफ्टी, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसात में खातिरख्वाह कमी आई है। अमरीका ने ईरान पर यमन के हूसी ग्रुप की जानिब से बहर अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का इल्जाम लगाया है। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत की तामीर का ख्वाब जन आंदोलन बनना चाहिए और मुल्क के नौजवानों को इस नजरिए को बुनियाद फराहम करनी चाहिए। वजीर आजम ने नई दिल्ली में विकसित भारत अहदाफ के लिए मुतल्लिका शोबों और देही तरक्की, ज़राअत और समाजी बहबूद की पेशरफ्त के जायजे के सिलसिले में सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों के सेक्रेटरी साहिबान के साथ साथ वजीर आजम के दफ्तर के सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा

0: सभा दोनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। हुकूमत की तरफ से बार बार इस यकीन दहानी के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है, ऑपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा। आज लोकसभा की कार्रवाई 3 मरतबा और राज्यसभा की कार्रवाई 4 मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों फरीकों की बात सुनी और कहा कि हुकूमत एक खुले जहन के साथ बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो कार्रवाई में रखनांदाजी के बजाय एक तफसीली बहस में हिस्सा ले। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे अगर हुकूमत इस बात की यकीन दहानी कराए कि नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही तय करने के सिलसिले में मुजाहरा कर रहे नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक खत में जनाब वांगचुक ने कल रात अस्पताल आने के लिए दोनों वजरा का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत के इकदाम की बदौलत संगीन नौयत के रेल हादसात की तादाद साल 2014-15 के 135 से घटकर इस साल 2026-27 के जून तक सिर्फ 2 रह गई है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और बेहतर रखरखाव के जरिए रेल सेफ्टी को मुस्तहकम किया गया। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि सेफ्टी से मुतालिक सरगर्मियों पर अखराजात साल 2013-14 के तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से तजावज कर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर पीर के रोज पार्लियामेंट की जानिब मार्च कर रहे मुजाहरीन पर किए गए मुबैना ताकत के इस्तेमाल पर मरकज और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने हुकाम को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी समेत पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम सबूत को महफूज रखने की हिदायत दी है। मुफादनामा की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए बेंच ने हुकाम को जवाब सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब मुसाफिर खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी ने हिफाजती वजूहात की बिना पर 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे। सिक्किम के नामची जिले में समरदंग में जेर तामीर सुरंग में बचाव टीमों ने मजीद 8 लाशों का पता लगाया है। ताहम सुरंग के अंदर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के सबब इन लाशों को निकाला नहीं जा सका। अहलकारों ने कहा है कि कम दूरी तक दिखाई देने और मीथेन गैस के रिसाव ने बचाव कार्रवाई को ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब तक 13 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि सुरंग के अंदर कुछ अफराद फंसे हुए हैं। सिक्किम हुकूमत और कौमी पनबिजली पावर कारपोरेशन के सीनियर ओहदेदारान मकाम पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एनएचपीसी टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां आज लगातार तीसरे दिन भी कोशिशों में लगी रहीं। बचाव कार्रवाई 24 घंटे जारी है, ताहम कम बसारत और मीथेन गैस के रिसाव ने लाशों को निकालने में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 8 लाशें टनल के दहाने से 2 किलोमीटर दूर हैं। इस दौरान सिक्किम हुकूमत ने हादसे में फौत होने वालों की लाशें आज उनके कुंबों को सौंपी। मरकज के अलावा सिक्किम हुकूमत और एनएचपीसी ने मुतासिरा कुंबों के लिए माली मदद का ऐलान किया है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई, जिसमें मंदिर के इंतजाम, अतियात के निजाम, तकरियों और इंतजामी असलाहत जैसे मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकररी खाली अहदों को पुर करने और इसकी मजहबी कमेटी की नई सिर से तश्कील पर तबादला ख्याल किया। ट्रस्ट ने कहा कि खसूसी तहकीकती टीम की हतमी रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई है और मीटिंग के दौरान इस मामले पर बातचीत नहीं हुई। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान नाजेबा मवाद नशर करने की बिना पर 50 OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگن نے بتایا کہ حکومت

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियाँ। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी।

0: दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या टीयर 2 सिटीज पर आधारित है या टीयर 3 सिटीज पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा अपना नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हों, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हों, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2,00,000 से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30,00,000 करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए, और वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही

0: इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करें। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है, ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा किया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है और उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं, फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेड करने तक, मार्केटिंग के तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है,
1: जी
0: और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों की थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है, तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग
1: जी
0: इस तरीके के। उदाहरण जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां स्टेब्लिश हुई हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनकी जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा, एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं,
1: जी
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, हमारी जो GDP का करीब 7%, 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं, उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग

0: हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमनालाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
1: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2 से 3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में।
0: जी
1: जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है। और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा अरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह है जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए, लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में, हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो, आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं। तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है,
0: जी।
1: लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है। मैं
0: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो

0: ग्रामीण युवा हैं जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निपटम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए, वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं। क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसिस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
2: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मान कर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या

0: है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मत, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको एडाप्ट कर लिया। तो ये एडाप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था आपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगी, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क्स और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें उसको जब आप इस PM FME से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। ऐसे में जिस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने, जो जैसे उपासना जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे

0: फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर। उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बनाकर ठीक किया गया था। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं, तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: वीडियो में भी 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बज चुके हैं। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

ये गीत हमने लिया था फिल्म रईस से, संगीत दिया था राम संबत ने और आवाज थी सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी और करण सगातिया की। अगली प्रस्तुति फिल्म दिल्ली 6 से है, जिसके रचनाकार है प्रसून जोशी, संगीत यार रहमान ने दिया है और आवाज दी है ऐश किंग ने।

ये गीत हमें लिया था फिल्म करीब से। इस गीत को शुरू से सजाया था अनु मलिक ने, रचना राहत इंदौरी की थी और आवाज थी कुमार सानू और संजीवनी की। आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत फिल्म खट्टा मीठा से है, जिसे लिपिबद्ध किया है इरशाद कामिल ने। संगीत प्रीतम का है और आवाज दी है के और सुनिधि चौहान ने।

फिल्म रेनकोट के इस गीत के संगीतकार थे देवज्योति मिश्रा और आवाज दी थी हरिहरन ने। आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। शाम की आवाज से सजे इस गीत को हमने फिल्म राजधानी एक्सप्रेस से लिया है। संगीत रितेश नालानी का है और रचना रमेश की है।

अभी आपने आनंद लिया फिल्म संगीत का। 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। समय हुआ है 10:30। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में शुभ्रा तलेगांवकर से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगी राग बागेश्री।

अभी आपने सुना शुभ्रा तलेगांवकर से ख्याल गायन, आपने प्रस्तुत किया राग बागेश्वरी। शास्त्रीय संगीत की अगली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं पंडित जसराज से ख्याल गायन, आप प्रस्तुत करेंगे राग भवानी बहार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन कलाकार थे शुभ्रत अली गांवकर और पंडित जसराज। मीडियम वेव 196.1 पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा